0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: cool song.
1: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: cool song.

सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

0: आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:07 हो चुके हैं। यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने के लिए। तो भाई कुर्सी की बेटी बांध लीजिए क्योंकि वाव मजा है। मॉर्निंग सिर्फ गुड नाइट, बिंदास होनी चाहिए और मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए यहाँ पे हम बातें तो करेंगे ही करेंगे मगर प्यारे प्यारे गाने भी जो हैं आपके लिए सुनाएंगे।
1: बड़ा समझ आया तेनु, समझ न आया का तू कर दाए दिलदारियां।
0: अमरिंदर गिल की आवाज में ये गाना तो सुनेंगे ही सुनेंगे मगर एक और

तो चलिए शुरू करते हैं आज के बिंदास मॉर्निंग्स को। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और कर दीजिए अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू। 3311063 पर भेज दीजिए अपने गुड मॉर्निंग कोड्स, गुड मॉर्निंग मैसेजेस। बताइए मुझे क्या हाल है और आज के इंटेंशंस क्या है बाबू। इरादा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: इन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:17 हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं, एक एक करके जरा देख लेते हैं। रशीन का मैसेज आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग जियो बिंदास करके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया मॉर्निंग हम विश करते हैं। और जियो बिंदास, जुल्फी भाई का मैसेज आया है और एक फोटो भेजा जिसमें लिखा है लाइफ विल नेवर प्रोवाइड वारंटीज एंड गारंटीज, इट कैन ओनली प्रोवाइड पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज टू कन्वर्ट देम इनटू सक्सेस। गुड मॉर्निंग करके, यही जुजारू मोटिवेशन ही तो चाहिए हमें। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग, सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्स आर द वंस हु कंटिन्यू स्माइलिंग जेंटली व्हाइल कैरिंग बैटल्स नो वन एल्स कैन सी। बिल्कुल सही बात है, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनगिनत लड़ाइयां अपने दिल में लड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी में लड़ रहे हैं, जिनके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। तो एक ही चीज हम कर सकते हैं, दैट इज टू बी काइंड। मगर आजकल के जमाने में काइंड होना भी बहुत क्या कहते हैं मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि भाई जमाना हमें बहुत ही क्या कहते हैं स्टूपिड फ्रेम कर देता है कि अगर कोई काइंड बनता है तो। बट मुझे लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग बुरे हैं या फिर कुछ सेट ऑफ लोगों का एक मेंटालिटी वैसा है, तो हमारे काइंडनेस ना दिखाने से वो नहीं बदलने वाले। अगर हम काइंडनेस दिखा सकते हैं, काइंड बन सकते हैं, काइंड रह सकते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। एक इंसान होने का कर्तव्य तो यार सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम काइंड रहे बाकी लोगों के लिए। और उसके साथ साथ मुझे अबरार भाई का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग करके एक बहुत ही प्यारा सा फोटो भेजा, उसमें लिखा है व्हेन थॉट्स रेस्ट एंड साइलेंस स्टेस पैराडाइज फाइंड्स इट्स वे। वाह वाह, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और नाजनीन जी का मैसेज आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग, विशिंग यू अ ब्राइट एनर्जेटिक एंड वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया बिंदास और एनर्जेटिक डे जो है मैं विश करता हूँ। और फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर में जब हम वापस आएंगे गानों के उस पार, तो एक सवाल पूछेंगे ये परखने के लिए कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं से कितने तेज हैं। Stay tuned.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। Cool Song.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में. फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बेनोम रन. इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सीआर सलीम और रोशन बशीर. ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे. फाल्कन फिटनेस बेनोम रन, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
0: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: सोचा ना था मूवी का गाना हमने सुना सोनू निगम और संजीवनी की आवाज में। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 6:30 हो रहे हैं और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का सवाल पूछने का वक्त आ चुका है।
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: तो भाई सवाल काफी सरल सा है, बहुत ही क्यूट सा है और ज्योग्राफिकल है। और सवाल ध्यान से सुनिएगा, मुझे लगता है बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब भी आप जल्दी जल्दी दे सकते हैं। सवाल यह है कि वर्ल्ड का डीपेस्ट हाइपरसलाइन लेक कौन सा है। हाइपरसलाइन लेक यानी कि ऐसा लेक होता है जहाँ पे सलाइन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, नमक बहुत ज़्यादा होता है वहाँ के पानी में, इसलिए मराइन एनिमल्स जो है वहाँ पे नहीं रह सकते उतना। और इस लेक का नाम भी बहुत फेमस है, उसका नाम फेमस होने का रीज़न यही है कि वहाँ पे मराइन एनिमल्स नहीं रह सकते, कोई भी तरीके का एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा ड्यू टू हाई सलाइन कंटेंट। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि हम वहाँ पे फ्लोट कर सकते हैं, ऐसे फ्लोट कर सकते हैं और वहाँ पे किसी भी तरीके से डूबने के चांसेस नहीं है। तो बताइए वर्ल्ड का डीपेस्ट हाइपरसलाइन लेक कौन सा है, उसका नाम क्या है। आपको मैसेज करना है 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले अभी के अभी आप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं सवाल का जवाब क्या है। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, ऑडियो नोट भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 4444106 पर और मुझे जवाब दे सकते हैं। तो देखिए जवाब देने के तरीके बहुत हैं, अब आपको चूज करना है कौन सा। प्रेफर तो मैं करूंगा कॉल, तो 4444106 पर कॉल कीजिए, बताइए मुझे कि क्या है इस सवाल का जवाब। और यही बोलते हुए सुनिधि और अभिजीत की आवाज में सुनते हैं गैंगस्टर मूवी का गाना। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे भाई थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि वर्ल्ड का डीपेस्ट हाइपरसेलाइन लेक कौन सा है, और मेरे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं। और यहाँ पे सरिता जी का एक ऑडियो आया है, वो जरा सुन लेते हैं।
1: गुड मॉर्निंग सुदेव जी, कैसे हैं?
0: मॉर्निंग।
1: मुझे डीपेस्ट ये लेक का तो नहीं मालूम है, बट हाँ जो डेड सी है उसका भी सेम है जैसा आपने क्वेश्चन पूछा है, बट वो सी है, आपने लेक पूछा है, आप ही बता दीजिए। आज गूगल नहीं करना है।
0: क्या बात,
1: सो मच, हैव अ नाइस डे।
0: क्या बात, क्या बात, आपने अब पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ कि सरिता जी आपने सही जवाब दिया है। डीपेस्ट जो हाइपरसेलाइन लेक है वो डेड सी ही है। और आपने जाने अनजाने में जो भी है, आपको जो पता था कि डेड सी करके एक चीज़ है, बट उसे डेड सी क्यों कहते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने क्लू दिया था कि ये रीज़न क्यों है उसे डेड सी बुलाने का। वहाँ पे जो है एक्वाटिक एनिमल्स या फिर मैराइन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि सलाइन कंटेंट जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और उसे सी क्यों बोलते हैं, लेक क्यों नहीं बोलते, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न जो है लोगों ने पूछा है। और उसका मेनली रीज़न ये है कि उसका जो साइज है और उसका जो डेप्थ है, उसके कारण जो है जब हम उसे देखते हैं तो एक सी जैसा ही है वो लगता है। और तीन कंट्रीज़ के बीच में वो आता है और बहुत ही विशाल सा एक लेक है वो, तो उसके साइज के कारण जो है उसे सी का एक परसेप्शन दिया रहता है। और साथ ही साथ सलाइन कंटेंट भी है उसमें। लेक्स में यूजुअली सलाइन कंटेंट उतना नहीं होता, बट ये बहुत ज़्यादा सलाइन कंटेंट है, इसलिए उसको सी का एक वो भी दिया गया है। इसलिए डेड सी इज द डीपेस्ट हाइपर सलाइन लेक इन द वर्ल्ड। उसके साथ साथ एलिस का मैसेज भी आया है, उन्होंने भी बोला है हाई एलिस हियर, द आंसर इज डेड सी, और आपने सही जवाब दिया, इसलिए आप लोग के लिए बजेंगी तालियां। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसी खुशी में चलिए सुनते हैं ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर, और कहते हैं जियो बिंदास रेडियो।

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
3: Rangi

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:07 हो रहे हैं और यहां पे मुझे मैसेज आया है दीपक जी का। दीपक जी ने बोला है, हेलो गुड मॉर्निंग सुदेव, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूं जी, बढ़िया हूं। संधु भाई का भी मैसेज आया, उन्होंने बोला है गुड मॉर्निंग ब्रो, हैव ए नाइस डे करके उन्होंने मैसेज किया है मुझे। हरपाल सिंह संधू फ्रॉम दुखान करके, थैंक यू संधु जी, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के। और आपको भी काफ़ी बढ़िया और बिंदास दिन जो है हम विश करते हैं। उसके साथ साथ अभी ज़रा मौसम का हाल हम ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि मौसम आजकल उतना बढ़िया तरीके से मौसमिंग नहीं कर रहा है। और अभी का जो टेम्परेचर है वो देखने को मिल रहा है 32 डिग्री सेल्सियस, जो आज का लोवेस्ट टेम्परेचर भी है। और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 43 डिग्री सेल्सियस, और हवाएं बह रही हैं 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएगी? ना मुन्ना ना, ये हवा तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। मगर कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम रेजिस्ट नहीं कर पाते करने से, वो छोटा सा वो बचपन का जो एक नटखटपन जो रहता है वो जाता ही नहीं है। तो ये सवाल बार बार आ भी जाता है, क्या करें, दिल तो बच्चा है जी। और यही बात बताते हुए हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि यार आप लोग ज़रा अपने आसपास के नज़ारे जो हैं फ़ोटो खींच के हमें भेज दीजिए 3311063 पर, क्योंकि मैं स्टूडियो के अंदर बैठा हूँ, इन चार दीवारों के अंदर मैं क्या नज़ारे देखूँगा। तो मेरे लिए मेरी आँखें बनिए, ज़रा आसपास जो नज़ारे हैं वो दिखाइए मुझे कैसा है। और अब बताइए आपके लिए मौसम कैसा है, अभी कैसा लग रहा है। 3311063 पर मैसेज कीजिए। और यही बबात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं। है जवानी तो इश्क होना है, होना है, होना है, बिल्कुल होना है। ये बात कोई मेरी मम्मी को भी बता दें। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जी अविनाश

0: It's only Hurry.
1: Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा coupon or mega draw ticket.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: This is Deepika Padukone.
6: Deepika Padukone.
5: Radio Olive 106.3.
7: I'm a number one. Radio Olive.
8: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
9: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में.
10: बिंदास मॉर्निंग.
11: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और स्टेशन क्लॉक में अभी 7:19 हो रहे हैं और यहां पे हमारे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। मुझे मैसेज जीजी भाई ने भेजा है और उन्होंने लिखा है कि गुड मॉर्निंग ब्रो, एंजॉय योर डे, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और सामी भाई का मैसेज आया है, सामी भाई ने थोड़े फोटोज भेजे हैं, लिखा है अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, वालेकुम अस्सलाम भाई, सब बढ़िया चल रहा है, आप बताएं क्या हाल है। और उन्होंने फोटोज भेजे हमें, अरे सूरज बाबू भाई क्या चमक रहा है, काफी सनी ब्राइट डे है आज और गर्मी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था रहेगी, तो ध्यान रखिएगा, पानी पीजिएगा, अच्छे से हाइड्रेटेड रहिएगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे जैसे गर्मी का वो बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो अच्छे से पानी पीजिएगा, बहुत ही अच्छे से पानी पीजिएगा। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। और यही याद दिलाते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में हम आएंगे फिट है तो हिट है में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे जबरदस्त हिट प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. और भाई यहाँ पे स्टेशन क्लॉक में 7:30 होने वाले हैं, थोड़ी देर में हो जाएंगे, अभी 7:29 ही हुआ है. तो मैंने गलत देख लिया था एकदम से. तो या और यहाँ पे अभी भाई टाइम हो चुका है, फिट है तो हिट हैगा.
1: फिट है तो हिट है.
0: फिट है तो हिट है में आज हम बात करेंगे स्ट्रेचिंग के बारे में. एक मिथ है, एक मिथ्या है कि स्ट्रेचिंग करोगे तो इंजरीज नहीं होगी. क्या सही में ऐसा है? स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को इम्प्रूव करने में जरूर हेल्प करता है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेचिंग से इंजरीज प्रिवेंट नहीं होती हैं. रिसर्च ये दिखाती है कि इंजरी रिस्क को कम करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. अगर मसल्स फ्लेक्सिबल हैं लेकिन वीक हैं तो इंजरी का रिस्क फिर भी रह सकता है. इसलिए इंजरी प्रिवेंशन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिक्वेट रिकवरी एंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुअल ट्रेनिंग प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना है लेकिन अगर हैमस्ट्रिंग वीक है या वर्कआउट वॉल्यूम अचानक बहुत बढ़ गया है तो स्ट्रेन का रिस्क वहां पे भी हो सकता है. रिसर्च जनरली यही सजेस्ट करता है कि स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, हमारे मोबिलिटी को इंप्रूव करता है, मूवमेंट को कंफर्टेबल बनाता है. लेकिन इंजरी प्रिवेंशन का बेस्ट अप्रोच है मोबिलिटी प्लस स्ट्रेंथ प्लस रिकवरी प्लस गुड टेक्निक. ये सारी चीजें जब मिलेंगी तब जाके जो है इंजरी प्रिवेंशन होती है. तो मोटी मोटी बात यह कि भाई स्ट्रेचिंग इंजरी प्रिवेंशन का इकलौता हिस्सा नहीं है, पूरा सोल्यूशन नहीं है. स्ट्रॉन्ग, वेल रिकवर्ड और प्रॉपरली ट्रेन्ड बॉडी ज्यादा रेसिलियंट होती है. और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं. मोनाली ठाकुर और शालमली की आवाज में सुनते हैं अय्या मूवी का गाना. स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलवेज 106.3 FM. जियो बिंदास.

0: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बिन उमरान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे। फाल्कन फिटनेस बिन उमरान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 7:50 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है एक बहुत ही बढ़िया बात जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। कतर एनर्जी ने जून 2026 के लिए फ्यूल प्राइसेस जो है अनाउंस किए हैं। डीजल और सुपर गैसोलीन 95 की कीमत में कोई बढ़ाव नहीं हुआ है। डीजल जो है वो 2.05 पर लीटर के रेट में है और सुपर गैसोलीन 95 2.10 पर लीटर के रेट पर ही है। लेकिन बदलाव आया है प्रीमियम गैसोलीन 91 की कीमत पर जो हो चुका है 2 पर लीटर। थोड़ा सा एक चेंज जो है आया है और फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि डीजल के और सुपर गैसोलीन के रेट में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। चेंजेस आए हैं प्रीमियम गैसोलीन 91 की कीमत पे जो बढ़कर 2 कतर रियाल पर लीटर हो चुके हैं और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: पुरंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:19 हो रहे हैं और यहां पे भाई आज जो है, आज से नहीं ऐसे कल शाम से जो है लोग खुशी से पागल हो रहे हैं, पैरों तले जमीन खिसक गई लोगों की। कशिश अभी आई नहीं है, वरना कशिश भी अभी शुरू हो जाती। वैसे बैंगलोर जो है कल जीत गई फाइनल 5 से जीत गई, और इस पूरे मैच में जो है फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने विराट कोहली फॉर वेरी राइट रीजंस, क्योंकि उन्होंने 42 बॉल्स में 75 रन स्कोर किया, नॉट आउट रहे वो, और काफ़ी अच्छी पारी जो है उन्होंने खेली। बीच में एक पॉइंट में जहां पे बैंगलोर का बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा हिल गया था, वहां पे उन्होंने कमान संभाली और एकदम बढ़िया तरीके से अपने प्रेशर को हैंडल करते हुए उन्होंने चेस में अपना जो एक वर्चस्व है, आधिपत्य है, वो उन्होंने दिखा दिया है। और ऐसे ही विराट कोहली को चेस मास्टर नहीं बोलते। अगर हम बात करें गुजरात के बैटिंग की, तो 155 रन्स उन्होंने बनाए, 8 गिर गए थे उनके, 20 ओवर खत्म हो चुके थे। बहुत बड़ा स्कोर नहीं है गुजरात के बैटिंग लाइनअप के हिसाब से, ये बहुत ही एवरेज स्कोर है सच बताएं तो। इससे बड़े स्कोर जो है गुजरात इजीली बना सकती थी, मगर यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी बैंगलोर के बॉलर्स की, उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करा उन सबको। वॉशिंगटन सुंदर ने 50 रन स्कोर किए गुजरात के लिए, निशांत सिंधु ने 20 रन स्कोर किए, जोस बटलर ने 19 रन स्कोर किए। ज़्यादा बड़ा तरीके से उनका बल्ला चल नहीं पाया। अगर हम बात करें हमारे बॉलर्स के बारे में, इनके बैंगलोर के बॉलर्स के बारे में, काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो या फिर राशिक सलीम हो, जोश हेजलवुड हो। और जोश हेजलवुड का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं एक स्ट्रीक चला आ रहा है, वो वाइट बॉल क्रिकेट में कोई भी मैच नहीं हारे हैं फाइनल में, जोश हेजलवुड, चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल हो, चाहे वो T20 का फाइनल हो या फिर ऑस्ट्रेलियन लीग का फाइनल हो, हमेशा वाइट बॉल क्रिकेट के फिनाले में अगर जोश हेजलवुड आए हैं तो वो जीते हैं। और बैंगलोर के साथ भी वो जो है स्ट्रीक मेंटेन करी उन्होंने। अगर हम बात करें गुजरात के बॉलिंग के बारे में, तो राशिद खान ने थोड़ा एक जो है ब्रेक थ्रू दिया, उन्होंने 25 रन दिए 4 ओवर में, 2 विकेट्स भी उन्होंने चटकाए। अर्शद खान ने थोड़ा महंगा पड़ा उनका, 4 ओवर्स में 32 रन पड़े, 1 विकेट मिला। मोहम्मद सिराज से उम्मीदें थी, मगर जिस तरीके से वो एक विजार्डरी कर पाते हैं, कल के दिन वो मैजिक नहीं दिख पाया। 1 विकेट जो है उन्होंने लिया है, 36 रन भी जो हैं उनके हाथ से गए हैं। और यहाँ पे भाई मानना पड़ेगा, जिस एक इंटेंशन के साथ इस बार बैंगलोर आई थी, बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने खेला है, परफॉर्म किया है, और अपना जो आधिपत्य है, अपना जो वर्चस्व है, वो उन्होंने कायम रखा है। इसी एक फील के साथ, इसी एक एनर्जी के साथ अगर वो अगले साल भी, अगले एडिशन में भी आ रहे हैं, तो भाई बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि अभी तक लगातार तीन बार कोई भी टीम जो है कप जीत नहीं पाई है। क्या बैंगलोर इस एक रवैये को तोड़ पाएगी, देखते हैं। फिलहाल अभी विनर्स को कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया खेला आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया खेला है और बहुत मस्त खेला, मज़ा आ गया था। मैच मैं देख नहीं पाया, बट मैं हाइलाइट्स देख रहा था, देख के मुझे जो कोहली की आंखों में जो आग दिखी, मुझे प्राइम विराट कोहली याद आ गया। और इसी खुशी में एक काम करते हैं, सारे बैंगलोर फैंस को कंग्रेट्स बोलते हैं और यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
3: Cool song.

0: देखिए, बैंगलोर के खवन पार्क में आजकल बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन चल रहा है मैंने सुना, मगर उस सेलिब्रेशन का जोश और बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे एक इंसान जो है बहुत खुश हो रहा है।
1: Yes, हम जीत गए।
0: अब माइक ऑफ करने का वक्त आ चुका है दोस्तों इसका। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश। कल
0: कशिश इतना खुश हो गई थी कल मैच देख के कि सोई नहीं कल रात को।
1: इसीलिए मैं फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाई क्योंकि सोई 4 बजे हूँ।
0: हाँ, तो फिर कैसे हो सकता है ऐसा, है ना?
1: सुपर ठीक है, बढ़िया बढ़िया, मैच जीत गए, बढ़िया नींद हो गई और मैं आ गई। पता है सबसे पहले जो है इंसान खुशी मनाता है जब आप मैच जीतते हो। मैंने कॉल किया है सुदेव को और भाई,
0: और मैं सोने के लिए लेटा हुआ था। मैं सोचा कि यार अब
1: फिर तकिए में मुंह डाल के रोए होंगे सुदेव।
0: बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं उस जोन में था कि कौन जीते कौन हारे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे
1: मेरी टीम तो आउट हो गई है, देखो
0: मुझे मेरा चादर मुबारक।
1: पर यार बहुत ही अमेजिंग गेम था और जिस तरीके से हमने कल बात करी थी कि कोई भी टीम जीते क्रिकेट की जीत होनी चाहिए,
0: जी जी,
1: लिटरली वैसा ही मैच था। चाहे मैं गुजरात की बात करूं, उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छा खेला, एक के बाद एक जो 3 विकेट राशिद खान ने लिए थे। ओह माय गॉड, अमेजिंग। एंड सबसे फेवरेट मोमेंट जो हम अभी ऑफ माइक भी डिस्कस कर रहे थे, विराट कोहली ने जो है छक्का मारने के लिए जो है ऐसे बैट उठाया, बॉल दूर गई और शुभमन गिल ने कैच कर लिया। सबको लगा कि जो है विराट कोहली आउट हो गए ऐसे मोमेंट पे, पर विराट ने बोला कि मैं आउट नहीं, जो करना है कर लो, एक बार चेक करके देख लो। सब जो है बोल रहे थे कि नहीं नहीं विकेट है विकेट है विकेट है, चेक हुआ एंड बॉल पहले ग्राउंड पे टच हो गई थी। तो शुभमन गिल आया और विराट कोहली ने बोला पर मैंने तो आपको आउट किया है। विराट ने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आउट नहीं, चल खेल आ जाओ।
0: मगर सोच के देखिए, अगर विराट वो डिसीजन ना लेता, वो कहते कि यार जो हो गया चलो जाते हैं, तो फिर शायद ही नहीं हो पाता।
1: यस, और पता नहीं कहां से उन्होंने देखा होगा, कहां से उन्हें ये रियलाइज हुआ होगा कि भाई मैं आउट नहीं हूं। सो ये वाली एक सेंस भी ना मुझे ऐसा लगता है इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद एक्सपीरियंस से आता है, क्योंकि अगर हम बात करें जैसे वैभव सूर्यवंशी इतने टाइम से अच्छा खेल रहे टूर्नामेंट में,
0: प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने,
1: प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने हैं, सो काफी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो है वो बोलता है।
0: एक्सपीरियंस भी होता है, इंट्यूशन भी होता है, कभी कभार तुम्हारा तुम जो ऑब्जर्वेशन रहता है तुम्हारा वो भी होता है। और
1: कई बार हमारी किस्मत भी होती है।
0: किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस मामले में, तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें बैंगलोर का जो बैटिंग लाइनअप है, इसमें वेंकटेश अय्यर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, उन्होंने भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ अपना जो योगदान देना था। ऑल्दो इस सीजन में ज्यादा उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि काफी बैलेंस्ड एक बैटिंग लाइनअप के साथ जो है बैंगलोर आई थी, और मुझे लगता है हर साल जो है बैंगलोर अच्छे बैटिंग लाइनअप के साथ ही आती है,
1: कहीं ना कहीं बॉलिंग में थोड़ा पीछे रह जाती
0: पीछे है, पर रह जाती है।
1: बॉलर्स ने भी कर अच्छा वो किया,
0: बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया
1: समथिंग में, अगर पूरी टीम को निपटा दिया था
0: दिल, और वो निपटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात काफी बैलेंस टीम है, अच्छा एक स्पिन अटैक भी है, अच्छा पेस अटैक भी है। अगर बैटिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 7th पोजिशन तक अच्छे बैट्समैन है उनके, 7th या फिर 6th पोजीशन में राहुल तेवाती आता है, वो भी बल्ला घुमा लेता है। तो देखिए बहुत ही डीप बैटिंग लाइनअप होने के बाद, इवन जेसन होल्डर भी काफी अच्छे बैट्समैन है, वो भी बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, अगर वो जिन उसके उनके बेस्ट डे के दिन बहुत ही मुश्किल होता है उनको आउट करना, और राशिद खान भी हम जानते हैं कि अगर उनका भी बल्ला घूम गया तो भाई चलता है। तो काफी अच्छा डीप बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद भी इनको रेस्ट्रिक्ट किया बैंगलोर के बॉलर्स ने,
1: ये बहुत अच्छी बात है। एंड राशिद खान तो जितनी बार स्क्रीन पे मुझे दिख रहा था, मुझे लग रहा था इसको क्यों दे दी यार बॉल, ये इसको इनको क्यों दे रहे हो यार बॉल, ये आउट कर रहे हैं
0: बिल्कुल
1: और रन भी नहीं दे रहे हैं।
0: ये राशिद खान का काफी वो है, मतलब काफी अच्छे बॉलर हैं, वो जानते हैं कैसे फसाना
1: है। एंड विराट कोहली खुद जो है बहुत सोच समझ के खेल रहे थे राशिद की बॉल, एंड मुझे लग रहा था कि ओ इससे बॉल लो यार कोई
0: नहीं, ये फाइनल तो ये काफी अच्छा ही था। मगर मेरा सबसे फेवरेट फाइनल विदाउट एनी मलाइस मैं बोलूंगा वो था गुजरात और सीएसके का। रीजन मैं बताता हूँ, चेन्नई जीतना ही नहीं था बट लास्ट बॉल तक मैच गया, और लास्ट बॉल में चाहिए थे कुछ रन्स और चौका या छक्का मार के जीत गए थे।
1: देखो उसमें तो मैं डिसएग्री नहीं करूंगी, ये वो मैच है जो मैंने भी देखा है, तब मैं चेन्नई को सपोर्ट कर रही थी एंड लाइक ब्रो
0: थैंक यू
1: क्रिकेट की जीत होती है।
0: वैसे बहुत ही खुशी की बात है, बैंगलोर की जर्सी में 2 स्टार लग जाएंगे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं और भी आना चाहिए, और भी आइए, 5 तो दूर है वैसे अभी फिलहाल, यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं।
1: 5 दूर है, रिटायरमेंट पास है किसी का,
0: कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, टीम तो और भी है,
1: और भाभी अनुज को भाभी आई थी यार गाइस, मुझे बहुत मजा आया,
0: और अभी चिन्नतला भी है हमारे पास, तो टेंशन नहीं है, तलापति है हमारे पास, तो फिलहाल यहाँ पे तुम सांसों में गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं हिमेश रेशमिया और तुलसी कुमार, लेजेंडरी तुलसी कुमार की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑल 106.3 FM।

Olive Bay. Story of the day. Story of the day. लगभग 10,000 साल पहले तक सारे के सारे इंसान लैक्टोस इंटॉलरेंट थे. बिल्कुल सही सुना आपने. मगर फिर ये चेंज कैसे आया? ये चेंज आया एवोल्यूशन के कारण. जब इंसान ने हर्डिंग शुरू की तो हमारे एंसेस्टर्स के डीएनए में एक रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसने बॉडी का मिल्क डाइजेस्टिंग स्विच हमेशा के लिए ऑन छोड़ दिया. और जब अकाल पड़ा तब यही स्टेराइल दूध लोगों के लिए अल्टीमेट लाइफ सेवर बन गया. जिनके पास ये म्यूटेंट जीन था वो सर्वाइव कर गए और उन्हें मिला एक कमाल का सर्वाइवल एज. और अगर वो जेनेटिक म्यूटेशन ना हुआ होता तो आज आपके लाइफ में चाय, पनीर, खीर, सेवई और चीज जैसी चीज नहीं होती. तो मनाइए हैप्पी वर्ल्ड मिल्क डे.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में। बिंदास
4: मॉर्निंग, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
5: Hi, main hu Sarika.
6: Sarika.
5: Radio. Aap mujhe sun rahe hain Radio Olive 106.3.
7: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network. Radio.

0: गाने का नाम फिर ना ऐसी रात आएगी। और देखो कल जैसी रात अब मुझे नहीं लगता और कभी आ पाएगी। अंजी वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश
1: और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव।
0: सुदेव जो है वो मतलब मैंने उनसे इतनी ज्यादा बैंगलोर की बात कर ली कि बाहर ही चले गए।
1: जी बैंगलोर का ट्रैफिक और
0: किसी के लिए नहीं रुक जाते।
1: एक्चुअली बैंगलोर का ट्रैफिक सबके लिए रुक जाता है,
0: सबके लिए।
1: तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ये विनिंग प्रोसेशन निकलेगा तो ये निकलेगा कैसे, ऑलरेडी रोड में ट्रैफिक है।
0: ठीक है गाइस, इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अभी तो फिलहाल मैं
1: मुझे लगता है ये लोग फोटो खींच के सबको स्टोरी में डालने के लिए बोल देंगे भाई यही है।
0: हाँ भाई हमारी तुम तो स्टोरी तो डालनी है ना तुमको, तो हम खींच के दे देते हैं फोटो। वैसे मैं बात कर रही थी हमारी जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनकी। सो क्या होता है ना कि जब बचपन में हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स पीनी होती थी तो मम्मी बोलती थी जब बड़े हो जाओगे तब पी लेना। और अब जब हम बड़े हो गए सॉफ्ट ड्रिंक्स पी सकते हैं, तब ये रिपोर्ट आ गई है कि अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स पियोगे तो हो सकता है कि आप गंजे हो जाओ। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कितना झूठ है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये न्यूज सुन के ही मेरा ऐसे दिख दक दुख दुख दुख दुख दुख दुख शुरू हो गया।
1: पता नहीं क्यों मतलब मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीता, मेरा मन नहीं करता पीने का, मगर जब भी इंडिया जाता हूँ तो फ्रूटी पीने का मन कर ही लेते बिना फ्रूटी के। और स्पेशली गर्मी के टाइम पे जब इंडिया में जाते हैं तो भाई फ्रूटी बिना पिए कैसे रह सकते,
0: कैसे रह सकते हो यार। वो जो 10 वाला पैकेट है जो एक बार में सुड़ूक करके पूरा खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर उसमें हवा भर के आप उस पे कूद के उसको फोड़ते हो, मजा ही आ जाता है।
1: एक और चीज यहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो यही है कि देखिए अब हम मजे की बात से ज्ञान की बात में आते हैं, थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ। तो ध्यान देना, अपने आसपास भी कभी ऑब्जर्व करना, जो भी चीज हमारे लिए बहुत ही प्लेजरेबल है वो एक पॉइंट के आगे हमारे लिए अच्छा नहीं है।
0: यस
1: ठीक है, चाहे वो खाना हो, गेम हो, कुछ भी हो, इस दुनिया में जो भी चीज हमें प्लेजर देती है, जो भी चीज हमें बहुत ही सुकून या फिर अच्छा फील कराती है, वो एक पॉइंट तक ही अच्छा है। इवन सोना भी एक पॉइंट तक अच्छा है, इवन ऐसे बैठे रहना भी एक पॉइंट तक अच्छा है, विच गोज ऑन टू प्रूव दैट हर चीज में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बैलेंस, ये संतुलन जब हम बना लेते हैं तो फिर धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी में भी वर्चस्व और आधिपत्य जो है पा लेते हैं।
0: बस इसीलिए मतलब मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है और ये मेरे लिए रिस्की है शायद, इसलिए गाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। ड्रामेबाज गाने का नाम है नौटंकी साला मूवी का ये ट्रैक है, इंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं थोड़ी सी देर में और कहते रहिए
1: जियो बिंदास।

0: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और अभी मेरे साथ एक स्पेशल एक गेस्ट जो है यहां पे पहुंच चुकी है। मैं इनके बारे में बताने से पहले बता दूं कि आज माधवन का बर्थडे है, मैडी का बर्थडे है और मैडी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहां पे हम सॉन्ग से जो है अपने आप को सजाने जरूर वाले हैं, कहानियों से सजाने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हम बताएंगे माधवन के बारे में, मगर मैं आपको मिलवाना चाहूंगा उस एक लेडी से जिन्होंने माधवन का टैलेंट पहचाना था जब माधवन बचपन में पब्लिक स्पीकिंग कर रहा था।
1: मेरे साथ प्रेडिक्ट किया था कि वो आने वाला है।
0: अच्छा, प्रेडिक्ट किया था। तनिषा मैडम है हमारे साथ। तनिषा मैडम प्लीज, मैडम आइए। कैसे हैं मैडम आप?
1: बिल्कुल
0: मैडम, आपको कैसे पता चला कि माधवन आगे बढ़ गए, इतना बड़ा स्टार बनेगा?
1: इट्स जस्ट यू नो, आप इतने सालों से हो, दुनिया देख रहे हो,
0: अच्छा
1: वो विजडम आ जाता है।
0: अच्छा तो मतलब आपने तो फिर मुझे लगता है मीटियोराइट भी प्रेडिक्ट कर दिया होगा।
1: yes, मैं पहले ही बता देती हूँ कि यू नो कुछ दिन बाद यू विल सी दिस।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया।
1: आई कैन सी योर फ्यूचर एज वेल बट आई कांट टेल यू राइट नाउ।
0: अभी मत बताइए। वैसे आपने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि बैंगलोर मैच हारेगी, मगर बैंगलोर तो जीत गई।
1: Yesterday when I talked about it,
0: अच्छा?
1: I said कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो लास्ट जीते हैं और after so long जीते थे और अभी फिर से फाइनल में पहुंच गए हैं, तो there are very much chances कि वो जीत गए और वो जीत गए।
0: अच्छी बात है।
1: I was so happy।
0: चलो
1: क्योंकि विराट कोहली।
0: कोई बात नहीं। हाँ, विराट कोहली के लिए हम सब बिल्कुल हैप्पी हैं।
1: आप ज्यादा हैप्पी क्यों नहीं लग रहे हैं?
0: नहीं, मैं विराट कोहली के लिए हैप्पी हूँ, बिल्कुल हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ।
1: हैप्पी क्यों नहीं लग रहे हैं?
0: मैं अपने लिए क्यों हैप्पी हूँ? मैं भाई बैंगलोर से ऐसा सपोर्टर ही नहीं हूँ तो फिर क्यों हैप्पी हूँ? विराट कोहली के लिए मैं हैप्पी हूँ, मुझे अच्छा है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा खेला उन्होंने, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया।
1: अंगूर थोड़े खट्टे हैं।
0: कोई बात नहीं, हमारे लिए कौन से अंगूर खट्टे हैं यार, क्या चले, हम तो 5 जीत ही चुके हैं।
1: प्लीज
0: वो टिश्यू गाय नदीम भाई को बोलो टिश्यू रखे, यहाँ पे कम हो गए।
1: पीछे
0: रखा है, मैं सामने देख के बात करता हूँ ना, इसलिए दिखाई नहीं दिया मुझे। तो मैं ये पूछा था कि हाँ, माधवन के बारे में आप बता रहे थे, तो आपकी फेवरेट मैडी मूवी कौन सी है?
1: एक्सक्यूज मी, इज दैट इवन अ क्वेश्चन?
0: सारे मूवीज।
1: नो, रहना है तेरे दिल में।
0: अच्छा, कौन सा गाना?
1: रहना है तेरे दिल।
0: अरे
2: कहना है, कहना है आज तुझसे, कहना है रहना है, रहना है तेरे दिल में, रहना है
1: भाई। मैडी,
0: इसके बाकी की लाइन गाओ।
1: बेकरार दिल है प्यासी,
0: बेकरार दिल है
1: प्यासी, रहना है
0: प्यासी, रहना है साथी, रहना है।
1: I don't know.
0: बताओ।
1: बेकरार दिल है प्यासी, रहना है एक पल मुझे ना चैना है, something।
0: कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अच्छी कोशिश रही है, मुझे भी नहीं पता था मैं कौन सा जज करने वाला हूँ।
1: तो एनीवेज गलत गाता है।
0: ओ भाई रुको।
1: बट मैडी,
0: हाँ मैडी, मैडी के बारे में बात कर रहे थे हम।
1: भाई क्रेजी क्रश, एंड टिल नाउ दो दैट कैरेक्टर वाज एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड बहुत सारे फ्लॉस थे
0: जी,
1: बट मैडी,
0: हाँ कैरिज्मा जो है माधवन का
1: so
0: बहुत ही बड़ा है। और अगर आपने विक्रम वेदा सुना होगा आपने मूवी,
1: I was talking to Prashik. Yeah. He just told me about it. I have not watched that movie.
0: तो विक्रम वेदा एक्चुअली तमिल में है, ओरिजिनल जो है तमिल में निकला था, उसके बाद उसका रीमेक हिंदी में बना था, बॉलीवुड में बना था, जिसमें ऋतिक रोशन ने भी एक्टिंग की है, पार्ट प्ले किया है। बट आप उसका तमिल देखना, उसमें तमिल में जो है माधवन है। माधवन ने बट दूसरा पुलिस का रोल किया है और वेदा का रोल किया है विजय सेतुपति ने। ही इज आल्सो अ फिनोमिनल एक्टर। तो आप जरूर, जिन लोगों ने नहीं देखा है विक्रम वेदा, आप जरूर तमिल में देखिए, उसका हिंदी डब अवेलेबल है, यूट्यूब में ही है, यू कैन चेक इट आउट। और डिसेंट डब है, मैंने देखा है खुद से, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा फनी ओवर द टॉप वाला डब नहीं है, बहुत ही डिसेंट डब है, यू विल एंजॉय इट।
1: आई लाइक तनुवेज मनु आल्सो।
0: तनुवेज मनु मैंने नहीं देखी।
1: ओह माय गॉड सुदेव,
0: नहीं देखी मैंने।
1: यू हैव टू, बोथ यू नो, इट इज वन ऑफ दोज रेयरेस्ट सीक्वल। जब 2 आया था तनुवेज मनु का, जो फर्स्ट की तरह ही अमेजिंग था।
0: अच्छा,
1: ऐसा यूजुअली होता नहीं, जब भी बॉलीवुड सीक्वल लेकर आता है बर्बाद कर देता है।
0: अभी रिसेंटली एक सीक्वल निकला जो बर्बाद नहीं है,
1: वो एक साथ बना था ना। ये सालों के डिफरेंस में था। एंड आई हैव हर्ड रूमर्स कि शायद रहना है तेरे दिल में भी आएगी और तनुवेज मनु 3 भी।
0: अरे अरे अरे, रहना है तेरे दिल में मैं चाहता हूँ ना आए।
1: आई वॉन्ट की अगर आए भी तो उसमें दिया मिर्जा और मैडी ही होने
0: चाहिए, बस उसके अलावा
1: नोबडी एल्स कैन रिप्लेस देम।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं। चलिए माधव उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास फ्रॉम बीइंग चार्मिंग मैडी टू द बाप ऑफ ऑल द रेंडर्स Radio Olive wishes our Madhavan a very happy birthday. Suniye Madhavan ke best soundtracks throughout the day only on Radio Olive.

0: सिर्फ शॉर्ट ब्रेक टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटूई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.

0: सावन की घटा हटाते हुए यहाँ पे तनीषा पहुंच चुकी है। तनीषा मैडम बताइए,
1: सावन का तो इंतजार कर रहे हैं भाई,
0: फिर आपने क्यों हटाई?
1: इतनी क्रेजी गर्मी हो रही है।
0: अच्छा वो तो है, बात तो सही कहा आपने। वेलकम बैक, ये है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव और मेरे साथ है
1: तनीषा।
0: तनीषा मैडम आज एकदम डॉल्ड अप होके आई हो, क्या हो गया?
1: मैंने सोचा कि हम अच्छे अच्छे कपड़े से स्पेशल ओकेजन्स के लिए रखते हैं
0: जी,
1: एंड देन वो ओकेजन कब आएगा किसे पता।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: कपड़े पड़े हुए हैं।
0: मुझे एक चीज याद आई है, इस जैसे ही आपने बोला तो मेरे घर में जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता था तो पायसम बनता है। ठीक है, पायसम बनता है, मोस्टली इट्स वर्मिसेली पायसम, हम सेमिया पायसम बोलते हैं। बहुत रेयरली ऐसे पालड़ा प्रदमन भी है, एक चीज है वो भी बनता है, बनता है, रेयरली बनता है बट बनता है। तो जब आपने स्पेशल बोला तो मुझे उस चीज की याद आई और मैंने सुबह मम्मी से बात कर तक पूछा कि क्या है, तो मम्मी बोल रही थी कि तो हम केरलाइट्स बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, देयर आर टू वेज, एक हमारा स्टार जो होता है उसका देखते हैं और जो बर्थ डेट होता है। तो मम्मी बता रही थी कि मम्मी का कल स्टार है, तो जिस स्टार में वो पैदा हुई थी वो स्टार कल आ रहा है, तो कल उनका है, तो वो एक पायसम रिलेटेड कुछ ऐसे कराने का सोच रही थी और वो बात चल रही थी। तो जैसे ही आपने स्पेशल बोला तो मुझे पायसम याद आया। पायसम से एक और चीज जुड़ी है, वो है दूध। ठीक है, मिल्क। और आज जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, आज बहुत स्पेशल डे है, आज है वर्ल्ड मिल्क डे। और वर्ल्ड मिल्क डे के दिन, और जिन लोगों ने स्टोरी ऑफ द डे सुना है उनको पता चल गया होगा कि मिल्क क्यों स्पेशल है हमारे लिए। एक टाइम पे बहुत ही हानिकारक होता था, बट अभी भी बहुत सारे लोग जो है लैक्टोज इंटॉलरेंट है, मगर
1: वी जस्ट डोंट नो अबाउट इट।
0: हाँ, वी डोंट नो अबाउट, जब हम पीते हैं तब पता चलता है, बट कुछ लोगों के अंदर जो जेनेटिक म्यूटेशन आया है उसके कारण वो चेंज आया और उसके कारण हम बदले हैं, मतलब जो मिल्क से जो एक ताल्लुक है हमारा बदल चुका है। मेरा सवाल आपसे एक है, ठीक है, हम इंडिया में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में दूध से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, चीज बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। अगर आपको मौका मिलता है, ठीक है, एक चीज इसमें से हटाने का, रिमूव करने का, कि ये नहीं चाहिए भाई, इस दुनिया में इस मिल्क प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, तो आप क्या हटाओगे?
1: ओके, दैट्स अ ट्रिकी वन।
0: आई नो, सिंपल पूछ लिया तो मजा क्या आएगा आपसे।
1: आई लाइक बटर, जो फ्रेश घर का बटर होता है, डिलिशियस, गर्मा गर्म आलू के पराठे और वो बटर।
0: ओके,
1: यार भूख लग गई सुनिए।
0: ठीक है, समझ गया, मुझे भी वो गर्मा गर्म आलू के पराठे उसमें बटर डाल के, बटर जब ऐसे ऐसे उसमें पिघलता है तो मजा आता ना।
1: एंड दैट व्हाइट बटर इज समथिंग एल्स।
0: ट्रू।
1: और जब मम्मा उसको बनाती थी, आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, बट
0: चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि मिल्क प्रोडक्ट को हटाना बहुत ही मुश्किल है, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई मिल्क प्रोडक्ट पसंद, जैसे कि मुझे बहुत पनीर पसंद है, मुझे दही बहुत पसंद है, बटर बहुत पसंद, तो दूध ही पूरा सारे तो पसंद नहीं है। चलो ठीक है,
1: आई जस्ट डोंट लाइक ड्रिंकिंग मिल्क।
0: ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, आपके इसके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ, और आपके फोर्टे से रिलेटेड सवाल है, घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
1: क्लैरिफाइड बटर।
0: क्या बात कर दी, ये डाउट क्लैरिफाई कर दिया। मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा था कि घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग घी को घी तो बोलते हैं और क्या बोलते हैं, GHEE।
1: नो, इट्स क्लैरिफाइड बटर।
0: ओके, नाइस नाइस।
1: एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट रियलाइज कि पनीर को कॉटेज चीज बोलते हैं। आई यूज्ड टू थिंक कि दिस इज आल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ चीज, लाइक मोज़रेला एंड ऑल दैट।
0: अच्छा, ओके।
1: एंड देन मुझे पता चला, ओह, पनीर को कॉटेज चीज बोलते हैं।
0: सो बेसिकली पनीर चीज है। क्या, मेरा बचपन तो बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, बट एनीवे ये सारी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं है, मिल्क प्रोडक्ट्स से रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे ट्रिविया भी हमने बता दिए हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे जबरदस्त हिट प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे भाई मेरे पास एक मैसेज आया है, मुझे सैम्स ने मैसेज किया है। उन्होंने बोला है, वेरी गुड मॉर्निंग टू तासु, रियली आई फील वेरी हैप्पी व्हेन एवर यू बोथ कम टू होस्ट एनी शो टुगेदर। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। तनीषा वैसे अभी बाहर बैठी है, मैं तनीषा को जरूर ये मैसेज जो है कन्वे कर दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और यहाँ पे एक खबर भी हम आपको देना चाहेंगे। कतर मोबिलिटी इनोवेशन सेंटर ने कतर ट्रैफिक रिपोर्ट 2024-2025 जो है जारी किया है, जिसमें देश भर के ट्रैफिक ट्रेंड, कंजेशन, कम्यूटर बिहेवियर और रोड नेटवर्क परफॉर्मेंस का एक विश्लेषण जो है किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही QMIC ने एक नई QTR वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहाँ ट्रैफिक और मोबिलिटी डेटा को हर साल अपडेट किया जाएगा। रिपोर्ट का जो उद्देश्य है, रिपोर्ट का जो इंटेंशन है, वो है गवर्नमेंट एजेंसीज, अर्बन प्लानर्स और ट्रांसपोर्ट स्टेक होल्डर्स को डेटा ड्रिवन इंसाइट्स देना, ताकि बेटर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग हो सके और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट भी उसके साथ साथ चले। QMIC के डायरेक्टर उमर अहमद अलजाबिर ने बोला है कि ये रिपोर्ट ट्रैफिक एफिशिएंसी और लोगों की क्वालिटी को बहुत ही इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ रिपोर्ट जो है AI, ट्रैफिक सेंसर्स, कनेक्टेड व्हीकल्स और क्राउडसोर्स्ड डेटा के माध्यम से तैयार की गई है और कतर के स्मार्ट मोबिलिटी गोल्स को भी सपोर्ट करता है। और यही बात बताते हुए पार्थिव गोयल की आवाज़ में सुनते हैं सांवरिया मूवी का एक बहुत ही प्यारा गाना। चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। यह है बिंदास मॉर्निंग्स और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 9:48 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है धीरे धीरे मैं टाटा बाबाई करना चाहूंगा। मेरे निकलने का वक्त आ चुका है, 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में मुस्कान आ जाइए, मगर जाने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि कभी कभी कुछ ऐसे हादसे जिंदगी में हो जाते हैं जहाँ पे कुछ लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं और उनकी जगह कभी कोई फिल नहीं कर सकता। ऐसे ही म्यूजिक की दुनिया में एक बहुत ही चमकता हुआ सितारा हमें छोड़ के जा चुका है, 6 साल हो चुके हैं उसके। मैं बात कर रहा हूँ वाजिद की। 2020 में जो है उनका देहांत हो गया था और बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं उन्होंने बॉलीवुड में दिए थे, म्यूजिक के लिए दिए थे। और भी बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस उनकी साइड से आने थे, मगर यू नो राइट, डिवाइन प्लान कुछ और ही होता है। मगर आज इस वक्त उन्हें याद करते हुए, उनको सलाम करते हुए, उनके टैलेंट को सलाम करते हुए हम आज का बिंदास मॉर्निंग जो है वाइंड अप करना चाहेंगे। और जाते जाते जाते मैं वाजिद की आवाज़ में एक गाना प्ले करते हुए जाना चाहूँगा और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: CB2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: This hour is brought to you by
3: Homestar Us. We complete your home.

मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस लाइफ मस्त है. सो भाई ऑफिशियली तो कल ही छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन सच बताएं फ्रिज में मिठाई अभी भी बची हुई है. मतलब आई एम श्योर आपके भी घर में कुछ ना कुछ मीठा, कुछ ना कुछ अच्छा अभी भी होगा. और एक फनी बात नोटिस की है कि जब छुट्टियां खत्म होती हैं ईद के बाद, सबके कॉन्वर्सेशन ना सब कुछ सेम होता है. कितना खाया, कितने गेस्ट आए थे, क्या वेट बढ़ाया. और इस बार तो मैंने देखा बहुत सारे लोग अपने जो प्लान्स बने हुए थे उनको करने के लिए बाहर चले गए थे. लाइक कोई ट्रैवल करने चला गया, कोई आसपास की कंट्रीज विजिट कर रहा था. सो दैट यू नो इतनी लंबी छुट्टियां फिर कब मिलेंगी पता नहीं. और 4-5 दिन में तो कोई भी अच्छी जगह पर आप घूम कर आ सकते हो. अब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं महीनों पहले से प्लान करती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे घूमना है, क्या कपड़े पहनने हैं. पर कुछ लोग होते हैं जो पहले ही सब कुछ कर लेते हैं धीरे धीरे चुपके चुपके, पर बताते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि यार उनके ट्रैवल को नज़र लग जाती है. सुबह सुबह मैं एक यू नो अपने एक फ्रेंड से मिली जिसने मुझे बताया कि यार वो इन छुट्टियों में 4-5 दिन के लिए प्रॉपर एक अच्छी जगह पर घूम कर आया है. और ही सेड कि यार मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि नज़र लग जाती है. मतलब पहले भी वो ऐसे और भी बहुत प्लान्स बना चुका है, लेकिन पहले वो सबको बता देता था ऑफिस में और यू नो आसपास दोस्तों को. और उसकी वजह से क्या होता था, सब बोलते थे अरे वाह यार तू सही है, बट इसी वजह से उसको लग जाती थी नज़र. सो अब आई विल से कि आप मुझे बताओ कि आपको भी लगता है कि ऐसे ही ट्रैवल्स वगैरह जो प्लान होते हैं उनमें नज़र लग जाती है, या आपको भी लगता है कि भाई छुपके छुपा के कर लो तो ठीक है, वरना सबको बताने के बाद चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311 1063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: trek. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं Radio Olive 106.3.

कहते हैं कोल्ड ड्रिंक ना ठंडक देती है, पर सिर्फ ठंडक नहीं, कभी कभी टैक्स भी लाती है। कथक की जनरल टैक्स अथॉरिटी ने स्वीटेंड ड्रिंक्स के लिए नया एक्साइज टैक्स गाइड रिलीज किया है। अब पहली बात तो ये मतलब मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये टारगेट सिर्फ पॉकेट नहीं है, हेल्थ भी है। मतलब अगर आपको लग रहा हो कि इसको महंगा करके या यू नो आपको थोड़ा सा ये महंगा फील करवाना चाहते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट ये है कि WHO के अकॉर्डिंग रेगुलर शुगरी ड्रिंक्स जो है वो ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट डिजीज के रिस्क को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है। और प्रॉब्लम यह है कि शुगर हमें दिखती नहीं है। एक नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल में कभी कभी 8 से 12 टेबल स्पून तक शुगर हो सकती है। एंड ये सुन के और पढ़ के ही मुझे इतना बुरा लग रहा था। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। यानी

0: ड्रिंक को जूस समझकर पी रहे हो और अंदर मिनी मतलब शुगर जा रहा है। सो इसीलिए दुनिया के काफी सारे कंट्रीज में शुगरी ड्रिंक्स पर एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो लगाया जाता है। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, टैक्स लगाने से लोग कम शुगरी ड्रिंक्स पियेंगे या फिर हम सब बोलेंगे कि जो भी है कड़क और कोल्ड ड्रिंक तो मतलब चाहिए ही चाहिए। बाय द वे, कौन सी कैटेगरी में आते हो आप, मतलब आपको फर्क पड़ता है यू नो ये शुगरी ड्रिंक्स महंगी होने से या फिर नहीं? 3311063 इज माय नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, फटाफट से व्हाट्सएप करो। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: टाइम्स, एक टिकट और 90 मिनट का प्रेशर। 4 जून को दोहा के ग्रैंड हमद स्टेडियम में लेबनन वर्सेस यमेन एएफसी एशियन कप क्वालिफायर के लिए आमने सामने होने वाले हैं। टुडे इज 1st of June, सो अभी भी 2-3-4 दिन बाकी है, मतलब 4 तारीख को ये मैच होने वाला है। और इस मैच की इम्पोर्टेंस बहुत सिंपल है, विनर आगे और लूजर वेट करेगा। मतलब पिछली बार दोनों टीम्स का मैच जो था वो 0-0 पर ड्रॉ रहा था। मतलब हिस्ट्री कह रही है कि ये ईजी मैच बिल्कुल नहीं होने वाला। और ऑनेस्टली कहता फुटबॉल के लिए लकी होस्ट भी बन चुका है, आपको पता है, चाहे वर्ल्ड कप हो, अरब कप हो, एशियन कप्स हो। और अब ये इंपॉर्टेंट क्वालिफायर, फुटबॉल का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, कभी कभी पूरा नेशन की होप्स जो है वो 90 मिनट्स में आ जाती है ना। और इसीलिए फुटबॉल सिर्फ गेम नहीं होता, यहाँ पे पूरा इमोशन बन जाता है। सो 4 तारीख का वेट करते हैं, बताऊंगी आपको एकदम लाइव अपडेट कि क्या चल रहा है, कैसे तैयारियां हो रही है। लेकिन इसी के साथ थोड़ी देर में किताब की बात करेंगे जो कि बहुत टाइम बाद मिली है मुझे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल अवेलेबल, राइट बैक, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: From being charming Maddie to the bop of all the renders, Radio Ola wishes R. Madhavan a very happy birthday. Suniye Madhavan ke best soundtracks throughout the day only on Radio Ola.

0: ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे। लगभग 10,000 साल पहले तक सारे के सारे इंसान लैक्टोस इंटॉलरेंट थे। बिल्कुल सही सुना आपने। मगर फिर ये चेंज कैसे आया? ये चेंज आया एवोल्यूशन के कारण। जब इंसान ने हर्डिंग शुरू की तो हमारे एंसेस्टर्स के डीएनए में एक रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसने बॉडी का मिल्क डाइजेस्टिंग स्विच हमेशा के लिए ऑन छोड़ दिया। और जब अकाल पड़ा तब यही स्टेराइल दूध लोगों के लिए अल्टीमेट लाइफ सेवर बन गया। जिनके पास ये म्यूटेंट जीन था वो सर्वाइव कर गए और उन्हें मिला एक कमाल का सर्वाइवल एज। और अगर वो जेनेटिक म्यूटेशन ना हुआ होता तो आज आपके लाइफ में चाय, पनीर, खीर, सेवई और चीज जैसी चीज नहीं होती। तो मनाइए हैप्पी वर्ल्ड मिल्क डे।
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Life.

0: वेलकम बैक. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है. और लाइफ को और भी ज्यादा मस्त बनाने के लिए इसमें कुछ किताबें, कुछ कहानियां, कुछ किस्से होना बहुत जरूरी है. सो इसीलिए आज की किताब का नाम है रिमार्केबल ब्राइट क्रिएचर्स.
1: ओके, बुक इन फोकस विद मुस्कान.
0: सो ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर है. और स्टोरी एक एल्डरली वुमन और एक इंटेलिजेंट ऑक्टोपस के अराउंड घूमती है. सुनने में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन बुक जो है वो अकेलेपन, दोस्ती, हीलिंग के बारे में है. और साइंटिस्ट कहते हैं कि ऑक्टोपस दुनिया के स्मार्टेस्ट क्रिएचर्स में से एक है. और ऑथर ने इसी आइडिया को ब्यूटिफुली स्टोरी में यूज किया है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी राइटर्स, ऑथर्स या फिर जो मतलब गाने लिखते हैं, जो मूवीज लिखते हैं, उनकी ना बात ही अलग है. मतलब वो कुछ भी सोच सकते हैं यार. कोई ऐसी थ्योरी, कोई ऐसी रिसर्च जो उन्होंने पढ़ी और उनके दिमाग में बैठ गई, बस उसी को लेके एक पूरी किताब लिख डाली. अगर आपको इमोशनल और यूनिक बुक्स पसंद है तो ये डेफिनेटली रीडिंग लिस्ट में होनी ही चाहिए. एक बार फिर से नाम बता देती हूँ, किताब का नाम है रिमार्केबल ब्राइट क्रिएचर्स. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास
1: रेडियो

18 साल तक ट्रॉफी का इंतजार, फिर लगातार दो खिताब, मतलब हर कोई इसी की बात कर रहा है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। भाई कल बेंगलुरु ने अपनी कहानी ही बदल दी। जिस टीम को कभी अंडर अचीवर कहा जाता था, वही अब लगातार दूसरी बार चैंपियन बन गई है। सो कल फाइनल में गुजरात को 5 विकेट से हरा कर 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। मतलब कल एवरीबॉडी वॉज सो हैप्पी, क्योंकि यार सबको ऐसा लगता है कि इस टीम को जीतना चाहिए था। मतलब पूरी अगर टूर्नामेंट की मैं बात करूँ, इतना लंबा चलता है पूरा टूर्नामेंट, और इस पूरे टूर्नामेंट में हर कोई कह रहा था कि यार दिस बैंगलोर की टीम इस बार बहुत फॉर्म में है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। बट आई एम श्योर आपके भी यू नो फेवरेट टीम रही होगी, और वो फाइनल तक आई नहीं आई, जीती नहीं जीती, ये सब आपको भी बुरा लग रहा होगा। बट देन कल का मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब पहले गुजरात ने बैटिंग किया था और इतनी तगड़ी फील्डिंग जमाई थी कि स्कोर बन ही नहीं पा रहे थे। कैप्टन रजत पाटीदार लगातार ट्रॉफी जीतने वाले सिर्फ तीसरे कैप्टन बने हैं। उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने 2009-10 और रोहित शर्मा ने 19-20 में ऐसा किया था। सो नाउ ही इज दी यू नो नंबर थर्ड। सो टॉप ऑर्डर ने मिलाकर मतलब क्या तो कमाल किया था यार। मतलब चाहे विराट कोहली हो, रजत पाटीदार हो और देवदत्त पड्डिकल हो, तीनों ने बहुत अच्छा खेला और बॉलर्स भी बहुत अच्छे थे। भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलाम और जोश हेजलवुड, इन 6 लोगों की बात ना एकदम सुपर हिट थी। मतलब पूरी टीम ही कह सकते हैं कि अमेजिंग थी। पर बैंगलोर के 8 अलग प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, जिसमें 3 बार विराट कोहली, 2 बार जोश हेजलवुड और बाकी कई सारे लोगों को एक एक बार यू नो प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया। तो इट वॉज सच एन अमेजिंग मैच। आप मुझे बताओ कि आपने इस मैच को कैसे इंजॉय किया। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311-1063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

नहीं, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी क्योंकि यू नो शाम को जब मैं ऑफिस से घर जाती हूँ तो आई ट्राई कि यार थोड़ा सा ये जो ट्विटर है जैसे अब एक्स बोलते हैं उस पर बहुत सारी डिबेट्स चल रही होती हैं, बहुत सारे लोग उस पर बड़े एक्टिव हो रहे होते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम तो इज ऑल अबाउट फैशन, ट्रेंड, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, बट मुझे कभी कभी ना कुछ पढ़ने का मन करता है तो मैं एक्स पर चली जाती हूँ। सो मैं वहाँ पर मैंने पढ़ा कि एक लड़का जो है वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम लिख रहा था। ही इज़ वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, अच्छी खासी कंपनी में, 5 गुना ज्यादा कमाता है वो अपने पार्टनर से। सो ये रिलेशनशिप पर क्या असर डालता है ये उसने बताया। एक माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय का स्टेटमेंट जब मैंने पढ़ा तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि सैलरी गैप रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं उसके हिसाब से, उस आर्टिकल के हिसाब से। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च कहती है कि मनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट रीजन नहीं बनता कभी भी। कम्युनिकेशन का लैक होना इज द प्रॉब्लम। एक साइड बोलती है कि सैलरी मैटर नहीं करती, दूसरी साइड बोलती है कि रियलिटी में बिल्स भी होते हैं तो वो मैटर करते हैं कि कौन कितना बिल पे कर पा रहा है, यू नो कौन कितने खर्चे उठा पा रहा है। सो आज के दिस मॉडर्न रिलेशनशिप्स में फाइनेंशियल

0: डिस्कशन पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ये बात तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। लेकिन हेल्दी कपल्स यूजुअली कॉम्पिटिशन नहीं करते, पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं। तो आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ये पढ़ा और मेरा दिमाग तो मतलब दोनों तरफ काम कर रहा था कि ये सही है या गलत है, ये प्रॉब्लम होती होगी या नहीं होती होगी। तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेते, रिलेशनशिप में सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अंडरस्टैंडिंग, बताओ मुझे 3311063 पर। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

भाई कतर की गर्मी को मैंने कभी अंडरएस्टिमेट नहीं किया है और आप भी मत कीजिए। लास्ट ईयर इट वॉज माई फर्स्ट सीजन इन कतर जब मैंने पहली बार गर्मी पूरी तरह से देखी थी। मतलब जब मैं 2024 में यहाँ पहली बार आई थी तब मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया था और मुझे लगा कि भाई बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ। तो फिर जब 2025 की पहली गर्मियाँ मैंने देखी तो मुझे पता चला कि भाई अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मास्क है। और आज से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का समर आउटडोर वर्क रिस्ट्रिक्शन जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। 10 बजे से 3 बजे तक आउटडोर वर्क जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। अब आज है 1 तारीख और आज से ही ये सब लागू हुआ है और ये रहेगा 15th of September तक, ठीक है। और रीजन बहुत सिंपल है भाई, सेफ्टी। रिसर्च के अकॉर्डिंग गर्ल्स समर्स में बॉडी टेम्परेचर डेंजरस लेवल तक पहुंच सकता है अगर हाइड्रेशन और रेस्ट जो है वो मेंटेन ना हो। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जो है वो रियल रिस्क बन जाते हैं, इसीलिए पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, शेड्स, ब्रेक्स, ये सब लग्जरी नहीं नेसेसिटी बन जाता है। और अगर आप एसी से बाहर निकले और लगा कि यार आप किसी दीवार से टकरा गए हो तो वेलकम टू गल्फ समर, ऐसे ही होता है यहाँ पे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे
1: स्टोरी ऑफ द डे। लगभग 10,000 साल पहले तक सारे के सारे इंसान लैक्टोस इंटॉलरेंट थे, बिल्कुल सही सुना आपने। मगर फिर ये चेंज कैसे आया? ये चेंज आया एवोल्यूशन के कारण। जब इंसान ने हर्डिंग शुरू की तो हमारे एंसेस्टर्स के डीएनए में एक रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसने बॉडी का मिल्क डाइजेस्टिंग स्विच हमेशा के लिए ऑन छोड़ दिया, और जब अकाल पड़ा तब यही स्टेराइल दूध लोगों के लिए अल्टीमेट लाइफ सेवर बन गया। जिनके पास ये म्यूटेंट जीन था वो सर्वाइव कर गए और उन्हें मिला एक कमाल का सर्वाइवल एज। और अगर वो जेनेटिक म्यूटेशन ना हुआ होता तो आज आपके लाइफ में चाय, पनीर, खीर, सेवई और चीज जैसी चीज नहीं होती। तो मनाइए हैप्पी वर्ल्ड मिल्क डे।
0: स्टोरी ऑफ द डे।
2: रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
3: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
3: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि आज पहली तारीख है, कुछ मीठा हो जाए, लेकिन आज सुबह सुबह मैंने पढ़ा कि भाई शुगरी ड्रिंक्स पे जो टैक्स है वो एक्साइज टैक्स बढ़ा दिया गया है। बट इसी के साथ फिर मुझे लगा कि चलो इसकी बात तो कर ही लेंगे, पर साथ ही साथ बात करते हैं कि मैं जब भी देखती हूँ किसी शादी को, किसी बर्थडे पार्टी को या किसी भी थीम पार्टी को, तो मुझे लगता है दिस वर्ल्ड इज़ लूजिंग कलर्स यार। मतलब शादियाँ भी बेज कलर की हो गई हैं। आपने कभी नोटिस किया है पहले वेडिंग कलर्स क्या होते थे? रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, मतलब हर फंक्शन के हिसाब से आपको कपड़े के कलर दिए जाते थे, लेकिन अब बेज, क्रीम, पेस्टल, ऑफ वाइट, इस तरह के कलर्स जो है वो आपको पहनने के लिए कहा जाता है। सब कुछ पिंटरेस्ट बोर्ड जैसा चल रहा है। मतलब कलर जो है वो, मतलब पहले कहा जाता था, साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते थे कि पेस्टल शेड्स कामनेस और सोफिस्टिकेशन रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एस्थेटिक्स ने भी इसे ट्रेंड बना दिया, पुश कर दिया। और फनी बात यह है कि पहले तो मतलब मैं शहरों को भी कलर के नाम से जानती थी जब मैं इंडिया में थी, कि जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं, लेकिन आजकल वेडिंग्स एल्बम देखो सब सेम फिल्टर लगते हैं। तो क्वेश्चन इज सेम कि आप टीम कलर हो या टीम पेस्टल, जरा मैसेज करके बताओ 3311063 पर कि आपने अपनी वेडिंग को कैसे डिजाइन किया था। और अगर आपको लगता है यार आपकी शादी तो 10-15 साल पहले हो चुकी है और उस टाइम पर तो ये कलर्स ही सब कुछ हुआ करते थे, तो आज के टाइम के लोगों के बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है, अगर आज के टाइम पे आपको कोई फंक्शन करना हो तो आप कलरफुल करोगे या फिर एकदम पेस्टल। 3311063 इज माई व्हाट्सएप नंबर, फटाफट से मैसेज कीजिए और वॉइस नोट भी भेज सकते हो। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है, ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: आपने कभी सुना है कि प्रॉब्लम को लिखो और प्रॉब्लम जो है वो आधी हो जाती है। ये फेमस प्रिंसिपल है किडलिंस लॉ का और आइडिया बहुत सिंपल है। अगर आप प्रॉब्लम क्लियरली लिख सकते हो तो आप उसको सॉल्यूशन जो है वो ढूंढने में हाफ वे पहुंच चुके हो। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। भाई मैंने बहुत सारे लॉ पढ़े हैं ऐसे, बट ये जो किडलिंस का लॉ है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। साइकोलॉजिस्ट भी जर्नलिंग रिकमेंड करते हैं, कहते हैं कि भाई यार अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो, समझो। आप उसे जब लिखते हो तो आपको क्लियरली समझ में आता है कि एक्चुअली दिमाग में चल क्या रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि जब थॉट्स सिर्फ दिमाग में होते हैं ना, तब सब कुछ बहुत मैसी लगता है, पर पेपर पर आते ही स्ट्रक्चर मिल जाता है। और इसीलिए सक्सेसफुल CEOs से लेकर स्टूडेंट्स तक नोट्स लिखते हैं। तो आज का सवाल क्या है कि आप अपने ऑफिस में या अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने चेकलिस्ट को रेगुलरली लिखते हो या नहीं। भाई मैंने तो एक चीज नोटिस की है, मैंने प्रॉब्लम कभी पेपर पर नहीं लिखी, पर मैं अपने काम को जरूर पेपर पर लिखती हूँ। मतलब एक लिस्ट बनाती हूँ जिससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे दिन भर के ये सारे काम है और वो काम मुझे बहुत आसान लगने लग जाते हैं। सो सवाल ये है कि आप टेंशन दिमाग में रखते हो या लिख लेते हो और उसे फिर सॉल्यूशन ढूंढ कर कमाल दिखाने की कोशिश करते हो। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

सो आज ना मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और रात को यू नो टाइम से सोने की कोशिश की, जैसे तैसे नींद आई, बट मैंने सोच लिया था कि भाई सुबह तो जल्दी उठना ही है. तो कभी कभी एनर्जी यू नो पाने के लिए रेस्ट नहीं वॉक चाहिए होती है, तो मैंने भी यही सोचा कि भाई करके देखते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल इन 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो अगर पूरा दिन आपको लेजी फील होता है तो जरूरी नहीं है कि आप थके हुए हो, कभी कभी बॉडी अंडर एक्टिव भी हो जाती है. और मैंने ऐसी कई सारी रिसर्च पढ़ी हैं जो शो करती हैं कि रेगुलर वॉकिंग जो है वो मूड को इम्प्रूव करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है और फोकस को बेटर बनाती है. अब जब आप सुबह उठ जाओगे तो हो सकता है कि आप अपना ब्रेकफास्ट बनाने जाओ, आप थोड़ा सा यू नो घर में काम करने लग जाओ, और इन सब चीज़ों से वॉक तो हो ही जाती है. सो इसीलिए 10,000 स्टेप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पॉपुलर है. ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली 10,000 ही हो, पॉइंट ये है कि मोर मूव लेस सिट, और जैसे जैसे आप ये फॉर्मूला अपना लोगे वैसे वैसे चीज़ें आसान हो जाएंगी. और सच बात है यार, बेस्ट आइडिया भी अक्सर वॉक करते करते ही आता है. मतलब अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना और आपको लगे कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा वॉक पर निकल जाएगा. ट्रस्ट मी, आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर आ जाएगा. इवन फोन पे बात करते करते आप वॉक किया करो, आपको आसान लगेगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे। लगभग 10,000 साल पहले तक सारे के सारे इंसान लैक्टोस इंटॉलरेंट थे। बिल्कुल सही सुना आपने। मगर फिर ये चेंज कैसे आया? ये चेंज आया एवोल्यूशन के कारण। जब इंसान ने हर्डिंग शुरू की तो हमारे एंसेस्टर्स के डीएनए में एक रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसने बॉडी का मिल्क डाइजेस्टिंग स्विच हमेशा के लिए ऑन छोड़ दिया। और जब अकाल पड़ा तब यही स्टेराइल दूध लोगों के लिए अल्टीमेट लाइफ सेवर बन गया। जिनके पास ये म्यूटेंट जीन था वो सर्वाइव कर गए और उन्हें मिला एक कमाल का सर्वाइवल एज। और अगर वो जेनेटिक म्यूटेशन ना हुआ होता तो आज आपके लाइफ में चाय, पनीर, खीर, सेवई और चीज जैसी चीज नहीं होती। तो मनाइए हैप्पी वर्ल्ड मिल्क डे।
1: You are listening to this is you are listening to Radio Olive 106.3 FM.
0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
1: जैकी श्रॉफ
2: रेडियो 106.3
0: जियो बिंदास। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

भाई कब मेरे जाने का टाइम हो जाता है और मुझे आपसे कहना होता है कि आज का ये लास्ट थॉट है। तो आज का लास्ट थॉट भी यही है कि कभी ट्रैफिक अच्छा नहीं होता, कभी वेदर अच्छा नहीं होता, कभी मूड अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हर दिन एक अच्छी बात ज़रूर होती है। एक छोटी सी स्माइल, एक किसी का कॉल, एक चाय या फिर एक कोई अच्छा सा गाना जो आपका फेवरेट हो और एकदम से रेडियो पर आ जाए। बस ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो लाइफ की ब्यूटी है। सो परफेक्ट मोमेंट्स ना कम ही होते हैं, सो गुड मोमेंट्स हर जगह होते हैं, बस उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द टाइम I have to say कि मुझे जाना होगा। आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें की और महीने की पहली तारीख है, I'm sure महीने की पहली तारीख पे एक different energy होती है क्योंकि सैलरी आ जाती है, और जब सैलरी आती है तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि यार कुछ मीठा खाना तो बनता है। पर फिर मुझे याद आता है कि देखो मीठा खाना ये जरूरी नहीं है कि उसमें आप कुछ चॉकलेट खा लो या कुछ शुगरी ड्रिंक्स ले लो। भाई मैं ये शुगरी ड्रिंक्स को तब से अवॉइड करती आई हूँ जब ये बहुत सस्ती थी। ये टैक्स तो आज लगा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अवॉइड करना ही बेटर है। और अगर मीठे खाने की बात करूँ तो मीठे में बहुत सारे अच्छे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि घर के बने हुए लड्डू या फिर जैगरी के बने हुए लड्डू या फिर कोई डेट्स या फिर फिग से किया हुआ स्वीट जो यू नो चॉकलेट्स होती हैं। सो ये सब आपको ना बड़े ही टेस्टी लगते हैं। सो एक्स्ट्रा शुगर वाली चॉकलेट खाने से अच्छा है कि इन सब की तरफ मुड़ जाइए। और अभी के लिए आई हैव टू से कि अपना ख्याल रखिए, स्माइल करते रहिए और याद रखिए कि लाइफ मस्त है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। आई विल बी राइट बैक कल सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक जियो बिंदास। Radio

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Olive Music Marathon. 1 ghanta. 1 ghanta. Non-stop back to back.

0: हर बंदी के मुंह से निकले चीख।
1: हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा।
0: सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
3: Commercial Bank. We are saving more. Turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.
4: Aaj din chadeya tere rang varga. तेरी चुम्मन पिछली संग वर्गा है किरना दे विच नशा जिहा किसे छीमे सप दे डंग वर्गा आज दिन चढ़िया

0: चढ़िया तेरे रंग वरदा
1: तनिषा
2: तनिषा. What a beautiful rendition of Ajidharan Chadhya in the voice of Harshdeep Kaur. Only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha Aagya ji, aapke saath Olive Recharge lekar a very good afternoon, meri jaan. Kya haal chal hai? Monday, June 1st. कैसा जा रहा है आपका? नए महीने की शुरुआत हो चुकी है. जोश कैसा है? सब जानना चाहती हूँ. क्या किया है अभी तक? यू नो, हाउ हैज द डे बीन? व्हाट्स द मूड फॉर दिस मंडे? लंच अंच किया कि नहीं? आ जाओ फटाफट से, मैसेज कर दो, बता दो 3311 1063 पर. क्या मस्त गाना है यार, मजा आ जाता है सुन के. And this one gives sukoon.
3: कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सका मेरे.
2: Beautiful.
4: जानम समझा करो.
2: पर जानम समझने को तैयार नहीं है भाई.
5: तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना.
2: इस भरी दोपहर गर्मी में राहत साहब ये खूबसूरत गाना लेकर राहत देने के लिए आपको आ रहे हैं. लेकिन उससे पहले आप आ जाओ मेरे पास, बताओ मुझे कैसे हो, क्या हाल चाल है. क्योंकि देखो ये तो मैंडेटरी है, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो मुझे आपके हाल चाल जानने, क्या कर रहे हो इस वक्त और यू नो कहाँ से सुन रहे हो, सब जानना चाहूंगी. 3311 1063 पर मैसेज कीजिए और सुन रही है रेडियो 106.3 FM. जी बिंदास मेरी जान.

0: बैंगलोर की टीम है जी हाँ. सो लास्ट ईयर व्हेन दे वन और सब ऐसे शॉक हो गए थे क्योंकि यू नो लगातार इतने टाइम से कोशिश हो रही थी, वो क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे थे, बट देन दे वन. और उसके बाद जो विंडो खुली है इस बार भी उन्होंने मौके पर चौका मार दिया है. सो दैट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल. और क्या चाहिए, एफर्ट्स करते रहो, यू विल गेट द रिजल्ट, द फ्रूट ऑफ इट मेरी जान. गिव अप नहीं करना होता, ठीक है. और अभी कूल सॉन्ग ऑफ द आवर भेज रही हूँ, इस गर्मी में तो डिजर्व करते हो आप, तो आइए एंजॉय करते हैं. स्टे ट्यून्ड एंड जय बिंदास. कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

0: रेडियो ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे। लगभग 10,000 साल पहले तक सारे के सारे इंसान लैक्टोस इंटॉलरेंट थे। बिल्कुल सही सुना आपने। मगर फिर ये चेंज कैसे आया? ये चेंज आया एवोल्यूशन के कारण। जब इंसान ने हर्डिंग शुरू की तो हमारे एंसेस्टर्स के डीएनए में एक रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसने बॉडी का मिल्क डाइजेस्टिंग स्विच हमेशा के लिए ऑन छोड़ दिया। और जब अकाल पड़ा तब यही स्टेराइल दूध लोगों के लिए अल्टीमेट लाइफ सेवर बन गया। जिनके पास ये म्यूटेंट जीन था वो सर्वाइव कर गए और उन्हें मिला एक कमाल का सर्वाइवल एज। और अगर वो जेनेटिक म्यूटेशन ना हुआ होता तो आज आपके लाइफ में चाय, पनीर, खीर, सेवई और चीज जैसी चीज नहीं होती। तो मनाइए हैप्पी वर्ल्ड मिल्क डे।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शाइन स्मार्टर दिस सीजन विद मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। एक्सचेंज योर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइन सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके।
5: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर।

0: तनिषा
1: कुणाल खांडेलवाल और सुनिधि चौहान की आवाज में भागम भाग मूवी से बहुत ही क्यूट रोमांटिक सा गाना सुना आपने ऑल योर रेडियो ऑल 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और आज है मैडी का बर्थडे यस आर माधवन इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे दैट मैन हैज प्रूव्ड हिज ऑरा एक्टिंग तो भाई कमाल ही है पर वो जिस भी रोल को टच करते हैं ना लाइक उसमें समा जाते हैं आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई और इंसान एक्टिंग कर रहा है लगता है यही कैरेक्टर है असलियत में भी एंड ही इज अमेजिंग एंड सच डाउन टू अर्थ पर्सन वी हैड इंटरव्यूज विद हिम इतने यू नो सॉफ्ट स्पोकन और ऐसा लगता है कि आप किसी सेलिब्रिटी से बात नहीं कर रहे हो यू नो दिस पर्सन एंड ही इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी और उनका बर्थडे सेलिब्रेट तो करना बनता है मेरी जान दैट इज व्हाई आज पूरा दिन रेडियो ऑलिव पर आप माधवन स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे और अभी वक्त हो गया है वो स्पेशल सॉन्ग सुनने का एंड दिस वन इज द स्पेशल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल रहना है तेरे दिल में मूवी से गेस कर पा रहे हो आप कौन सा गाना चलाने वाले हो मैं हाँ
2: सच कह रहा है दीवाना दिल दिल ना किसी
1: हाँ जी दिस ब्यूटिफुल ट्रैक इज कमिंग योर वे Only on Radio Olive 106.3 FM. Jio, Bindas, Meri Jaan. From being charming Maddie to the bop of all the renders. Radio Olive wishes R. Madhavan a very happy birthday. Suniye Madhavan ke best soundtracks throughout the day only on Radio Olive.

0: Radio Olive, your happiness frequency. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: ओनली लगा और हो जा रिचार्ज। ओनली रिचार्ज।
0: ओनली रिचार्ज। रेडियो ओनली 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
2: ओनली रिचार्ज।
3: This hour is brought to you by
4: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
5: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और क्रेजी गर्मी हो चुकी है, हमें उसका एहसास हो ही रहा है बहुत जोर से। इस वक्त अगर बाहर निकल जाओ भाई साहब, बैंड बज जाएगी। और इसीलिए गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि अभी यू नो कड़कती धूप में लगे आफ्टर 10 till 3:30 बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है। राइट नाउ द टेम्परेचर इज 42 degrees, यस। और कहा जा रहा है, मेट डिपार्टमेंट ने भी कह दिया है कि यू नो कि कतर जो है वो अपने 3rd hottest month में पहुंच चुका है और ये तो बस शुरुआत है मेरी जान। सो प्लीज अपना ख्याल रखिए, stay hydrated, you know, have fruits which has more water contain, electrolytes वगैरह साथ में रखिए। प्लीज अपना ख्याल रखिए क्योंकि आपको कोई परेशानी हो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता यार। जी हाँ, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और बाकी बढ़िया कमाल के गाने यहाँ पे आपको चल रखने के लिए तो हम चला ही रहे हैं। तो सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. और इस गर्मी में अगर वीकेंड्स पे ऐसे यू नो कुछ दिन में प्लान नहीं कर सकते, आप नहीं निकल सकते, मन ही नहीं करता है, तो स्टेकेशन प्लान कर सकते हो, क्योंकि कटारा हॉस्पिटैलिटी ने लॉन्च किया है समर योर वे कैंपेन. जी हाँ, आज से जून 1st से स्टार्ट हो रहा है वो, एंड इट विल गो अंटिल अगस्त 31st. तो वहाँ पर आप बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग ऑफर्स जो हैं अवेल कर सकते हैं. यू कैन गेट डिस्काउंट्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. यू नो, वन नाइट का अगर आप स्टे कर रहे हैं वहाँ पे तो 20% ऑफ रूम्स, डाइनिंग एंड स्पा ट्रीटमेंट्स मिलेगा आपको. टू नाइट्स का कर रहे तो 30% का ऑफ मिलेगा. थ्री नाइट्स या फिर उससे ज़्यादा का कर रहे तो 40% का ऑफ मिलेगा. और साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होंगे, अर्ली चेक इन या फिर लेट चेकआउट कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड इन रूम एमिनिटीज आपको मिल जाएंगी, रूम अपग्रेड का भी ऑप्शन है आपके पास. एंड इफ इवन इफ यू आर नॉट स्टेइंग ओवरनाइट, यू नो आप सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट्स और कैफे में 25% ऑफ मिल सकता है, स्पा ट्रीटमेंट्स पर ऑफ है, बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे आपको पूल्स और बीचेस एक्सेस के लिए. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन. चेकआउट कीजिए और प्लान कीजिए अपने वीकेंड्स अकॉर्डिंगली इन दिस समर एंड मेक सम गुड मेमोरीज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. बढ़िया रहेगा. और सुंदर रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है. जबरदस्त

0: पापॉन की आवाज है सुल्तान मूवी से. बहुत सुंदर गाना, इतने प्यारे लिरिक्स हैं इस गाने के.
1: इस सुंदर गाने के बाद एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व जो है तनिषा के साथ शो में पहुंच चुका है. और वो और कोई नहीं है, मैं खुद आपका मेजबान आरजे सुदेश.
0: जोक्स
1: वो आईना देख के बात कर रही थी, जोक्स बोला. जोक्स ऑफ द सेंचुरीज.
0: अरे मैंने एक इम्पोर्टेंट बात करनी है.
1: अच्छा, एक ही करनी है ना?
0: एक ही करूंगी. सो टाइगर श्रॉफ की जो बहन है, उन्होंने बताया कि उनका जो फिटनेस रूटीन है और जितने वो ऑब्सेस्ड हैं, और एक्चुअली अच्छी बात है जो हैबिट है उनकी, यू नो, अपने आप को फिट और फाइन रखने की,
1: बिल्कुल.
0: वो इतनी क्रेजी है कि वो अपने बर्थडे का केक सिर्फ स्मेल करते हैं, वो खाते नहीं होते.
1: मैं भी सिर्फ स्मेल करता हूं.
0: स्मेल करके वो खा ही जाता है, पता भी नहीं चलता.
1: नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. मैंने अपना बर्थडे केक खाया नहीं था.
0: क्या?
1: आधा केक मेरे लोगों मुंह पे मार दिया था लोगों ने.
0: मैंने खिलाया था तुझे सुधे.
1: वो खिलाना बोलते हैं.
0: जूट्स.
1: वो तो उसे ही सूंघना बोलते हैं. ठीक है, इतना सा टुकड़ा दिया था.
0: बट कैन यू इमेजिन समबडी, यू नो, लाइक गोइंग दिस क्रेजी. आई कैन नॉट इमेजिन माय सेल्फ इन दैट.
1: ये बोल के मुझे एक सीन याद आया. एक सीरीज है, दिल्ली बेस्ड एक सीरीज है जिसमें अमरीश वर्मा एक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये जाता, ये नहीं, मैं ऐसा नहीं, वो उसकी बात नहीं कर रहा, दूसरा एक है.
0: अच्छा,
1: अरे देखो क्या बात है. तो उसमें क्या होता है, अमरीश वर्मा जाता है, ठीक है, समोसा जो चाट बनाने वाला बंदा होता है ना, उसके पास जाया कहता है कि भाई एक प्लेट समोसा चाट बना दे. वो समोसा चाट बनाते, कह रहा भाई थोड़ी पापड़ी और डाल दे. कहता हाँ बढ़िया, ठीक है पापड़ी और डालते. तो थोड़ा दही और वो चटनी डाल, हरी वाली, भर भर के डालियो, और थोड़ा भील भी ऐसे डलवाता है. उसके बाद कहता है कि चल दे. उसके बाद वो क्या करता है, वो प्लेट लेता है,
0: आंखें बंद करके खुद को ही कैबेज फीड कर रहे हैं, लेटस फीड कर रहे हैं.
1: मैंने रिसेंटली देखा था, 3-bite theory कहते हैं इसे. तो अगर आपको क्रेविंग आ रही
0: है, तो
1: मैं इस चीज का बहुत बड़ा एक सपोर्टर भी हूँ, क्योंकि कई बार मैंने नोटिस किया कि मुझे एक चीज की क्रेविंग होती है. हाँ. तो मुझे पूरा खाने का मन नहीं होता.
0: अच्छा.
1: प्रोबेबली 1 या 2 bite में मेरा क्रेविंग खत्म हो जाता है.
0: Okay.
1: उसके बाद फिर मुझे वो जबरदस्ती खाना पड़ता है.
0: Okay.
1: तो हाँ, लास्ट टाइम पे जब हम बाहर गए थे तो छोले भटूरे खाए थे हमने, मेरा 1-2 bite में मन भर गया था.
0: Wow.
1: उसके बाद फिर मैंने वो पूरा खत्म करने के लिए खाया.
0: अच्छा, तो सीरियस था. सो जो मैं बोल के हंस रही थी नौहीद की वीडियो के बारे में, सो व्हाट शी वाज डूइंग, शी टॉक्ड अबाउट दिस 3-step theory, 3-bite theory ओनली, एंड उसने अपनी प्लेट में गुलाब जामुन ले रखे थे. शी वाज लाइक लेट्स टेस्ट इट. वो एक गुलाब जामुन का पहला बाइट लेती है,
1: और दूसरा
0: शी वाज लाइक ओके. दूसरे में वो उस आधे गुलाब जामुन के साथ एक और लेती है, तीसरे में 2 लेती है. हाँ हाँ, इट वर्क्स, इट वर्क्स.
1: 3-bite 3 वीडियो देखा था मैंने. बट या मतलब मेरे लिए तो काम कर जाता है.
0: मेरे लिए भी
1: बिल्कुल, मेरे लिए तो बिल्कुल काम करता है. फिलहाल यही बात बताते हुए हम भी
0: अभी काम करेगा ये खूबसूरत गाना रवि शेरगिल की आवाज में.
1: क्या बात,
0: तेरे बिन सानू सोनिया.
1: स्टे ट्यून. नहीं लगना,
0: स्टे ट्यून. एंड
1: मैं सारे घूम के
0: उन्हें गाने देना, वो बेटर गाते हैं.
1: अच्छा ठीक है,
0: ठीक है.
1: अमेरिका, रूस, मलेशिया,
0: जियो बिंदास मेरी जान.

तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक सोच रहे हैं ऑन रेडियो 106.3 FM। तनीषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर, और काफी लोग ये चीज नहीं सोच सके जो एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए सोच लिया। सो इन 1960s जापान में एक दो फ्रेंड्स थे, एक्चुअली एक नहीं दो फ्रेंड्स थे, एंड दिस गाय उनका जो फ्रेंड था उसकी ना विजन थोड़ी थोड़ी जा रही थी। सो ही वॉज वरिड कि यार वो कैसे कम्यूट करता होगा अगर उसे रोड्स क्रॉस करने हैं, हाउ इज ही एबल टू डू दैट। तो उसने अपने दोस्त से पूछा, तो दोस्त ने बताया कि मैं ना अपने शू के सोल से सम हाउ डर्ट और लाइकन के बीच में डिफरेंस जान पाता हूँ, सो दैट्स हाउ आई क्रॉस माई रोड्स एंड दैट्स हाउ आई यू नो कम्यूट। तो ही थॉट कि अगर वो लाइकन और डर्ट के बीच में डिफरेंस जान पा रहा है, तो ऐसा ही कुछ अगर हम ऐसे लोगों के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए बनाएं, तो जहाँ पे यू नो इंटायर सिटी और एनी पब्लिक स्पॉट इज टेलिंग देम कि कहाँ पर चलना है और कहाँ पर नहीं चलना है, रुक जाना है, तो दैट विल बी रियली अमेजिंग। एंड उन्होंने कोई ग्रांट नहीं ली, किसी से कुछ बात नहीं की, पैसे नहीं लिए, खुद से पैसे खर्च करके एक प्रोटोटाइप बनाया जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, मतलब कि यू कैन कीप वॉकिंग एंड अगर स्टॉप डोम्स हैं यू नो थोड़े उठे हुए तो वहाँ पर आपको रुकना है। एंड ही planted them near the schools और एक दो साल तक बढ़िया चला एंड दे सॉ द रिजल्ट, क्योंकि इनिशियली जब वो ये लेकर प्रोटोटाइप गए एक ब्लाइंड एसोसिएशन के पास अपनी लोकल कम्युनिटी में, तो उन्होंने भी बोला कि यार ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, ये थोड़ी ना हेल्प करेगी लोगों की, ये नहीं चलेगा नहीं चलेगा, एंड दे जस्ट रिजेक्टेड इट एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अप। सो उन्होंने स्कूल्स के आसपास लगाया वो प्रोटोटाइप यू नो एंड इट वर्कड रियली वेल, काफ़ी लोगों की मदद की गई। तो 1967 में फाइनली उसको एक्नॉलेज किया गया और उसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया। सो यू नो इन द पब्लिक स्पेसेस और मेट्रो स्टेशंस और समटाइम्स रोड्स इन ऑल पे जब आप वो येलो लाइंस देखते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टली जो लाइंस हैं वो थोड़ी सी उठी हुई होती हैं और देर आर यू नो डोम्स जो थोड़े उठे हुए होते हैं येलो लाइन में ही, that is because of that one friendship. A friend loved his friend so much ki usne socha kyun na isi ke through main puri duniya ki bhi help kar paunga, and he did that and that was absolutely beautiful and such a beautiful gesture also such a simple and unique innovation to help people. ऐसा ही होता है यार, छोटी छोटी चीजों में ना बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं हम, हमें इनिशियली लगता है कि यार ये तो कुछ नहीं है यार, पर भरोसा रखना होता है अपने ऊपर। सेंडिंग ओ सुंदरी ओनली ऑन रेडियो ऑल ऑफ जुबिन दास।

जावेद अली साहब की आवाज में शिवल्ली फ्रॉम द मूवी पुष्पा ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम. तनिशा आपके साथ ऑलिवी टॉट चल रहा है यहाँ पर. लेम जैम्स का वक्त हो गया और लेम जैम्स का आज का मेरा सवाल है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर जल्दी जल्दी में या फिर फटाफट से चाय पीना अलाउड नहीं है, नहीं पी सकते. वो आपको देश के नाम से ही पता चल जाएगी ये चीज, तो आप मुझे गैस करके बताइए. 3311 1063 पर लॉजिक पे नहीं जाना है. एक बार फिर से सुनिए, ऐसा कौन सा देश है जहां पर जल्दी जल्दी में या फिर फटाफट से चाय पीना अलाउड नहीं है. 3311 1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर. चांद मेरा दिल से टाइटल ट्रैक भेज रही हूँ. बाय द वे आई वॉच दिस मूवी सिमरन के रिकमेंडेशन के बाद. शी सेड कि यार बढ़िया मूवी है, तो मैंने ओके लेट मी सी, क्योंकि रिव्यूज तो खास नहीं थे, बट एक्चुअली इट इज़ अ नाइस मूवी एंड दैट गाय इज टू गुड यार. मतलब बैड्स में तो उसने बढ़िया ही काम किया था, इसमें भी सही है, देख सकते हो आप एक बार. यस, स्टे ट्यून्ड एंड जियो विद अस.

0: Arijit Singh aur Antara Mitra ki awaz mein Janam Janam from the movie Dilwale only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath Olive Retort chal rahe hain ab. So Lame Jams ka aaj ka mera sawal tha ki aisi kaun si country hai jahan par jaldi jaldi ya fir fatafat se chai peena mana hai, allowed nahi hai. And jo bhi mujhe China answer de rahe hain ekdam galat hai meri jaan, kyunki China ka ye hai ki वहाँ पे चाय पीना ही मना है, नाम से चाइना, लेकिन ये कोई और कंट्री है. सो पहले तो ना मुझे जितने भी अभी तक लोगों ने मैसेज किया है, नाइजा, सुनीता, मोहम्मद यूसुफ खान साहब, आसमा, एन, योगिनी. सो एन ने ना पहले चाइना लिखा था, देन उन्हें रियलाइज हुआ कि अरे नहीं, ये तो नहीं है. फिर उन्होंने मुझे करेक्ट आंसर भेजा जो कि मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन एक मौका और आपको देती हूँ, सोचे जरा. द आंसर इज नॉट चाइना, पहले ही बता रही हूँ. The question is कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर जल्दी जल्दी से यू नो रश करके फटाफट से चाय पीना अलाउड नहीं है. द नेम सेज इट ऑल, सोचिए कौन सी हो सकती है. ठीक है, ए से शुरू होती है, इतना बता देती हूँ, अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बताऊंगी आपको, है ना, जवाब दे देती हूँ फिर मैं. थोड़ी देर में लौट कर आती हूँ, सोचे जरा. 3311063 पर मैसेज करें और सुनते रहिए रेडियो ऑल जी बिंदास.
1: Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour. Song of the
2: hour. Kya baat hai sir? Kya par ye baat hai? Cool song.

0: CB 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
3: ऑनली लगा और हो जा रिचार्ज.
4: Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
5: This hour is brought to you by
6: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
7: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. और अगर आपके कोई प्लान्स नहीं है इस 4th of June के लिए, तो मैं आ गई हूँ इस थर्सडे का प्लान आपको बनवाने के लिए. जी हाँ, सो कतर में होने वाला है AFC क्वालिफायर मैच बिटवीन लेबनान एंड येमेन ऑन 4th of June 7 बजे शाम को ग्रैंड हमद स्टेडियम में. यस, और अगर आप वो विटनेस करना चाहते हैं तो डू नॉट मिस आउट, क्योंकि टिकट्स ऑलरेडी लाइव हो चुकी हैं सिंस यस्टरडे. www.roadtoqatar.qa पर जाइए और अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए एंड लेट द मैडनेस कंटिन्यू, क्योंकि भाई कतर के जैसे स्पोर्ट्स इवेंट कोई और होस्ट नहीं कर सकता है, ये तो हम जानते ही हैं. तो ये एक्सपीरियंस करना तो बनता है ना. सो फटाफट से जाइए www.roadtoqatar.qa पर और साथ में सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

of the day. Story of the day. Oh, oh, oh, oh. Story of the day. लगभग 10,000 साल पहले तक सारे के सारे इंसान लैक्टोस इंटॉलरेंट थे. बिल्कुल सही सुना आपने. मगर फिर ये चेंज कैसे आया? ये चेंज आया एवोल्यूशन के कारण. जब इंसान ने हर्डिंग शुरू की तो हमारे एंसेस्टर्स के डीएनए में एक रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसने बॉडी का मिल्क डाइजेस्टिंग स्विच हमेशा के लिए ऑन छोड़ दिया. और जब अकाल पड़ा तब यही स्टेराइल दूध लोगों के लिए अल्टीमेट लाइफ सेवर बन गया. जिनके पास ये म्यूटेंट जीन था वो सर्वाइव कर गए और उन्हें मिला एक कमाल का सर्वाइवल एज. और अगर वो जेनेटिक म्यूटेशन ना हुआ होता तो आज आपके लाइफ में चाय, पनीर, खीर, सेवई और चीज जैसी चीज नहीं होती. तो मनाइए हैप्पी वर्ल्ड मिल्क डे.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. और सवाल पूछा था Liam Jans में कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर जल्दी जल्दी या फिर फटाफट से चाय पीना मना है. और जब मैंने हिंट दी कि नाम ए से शुरू होता है और चाइना नहीं है, तो आ गए हैं सही जवाब मेरे पास. जी हाँ, everybody has given the correct answer now. And yes, the correct answer is Argentina. I know जो शक्ल आपने बनाई है ना इस वक्त ये सुनकर, वही सेम शक्ल मुझे सिमरन ने बना के दी थी जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा था. सो ये तो मैंने देखा ही था कि होना ही है. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वक्त हो गया मेरे जाने का, सिमरन आने वाली है. कल मिलते हैं दोपहर 2 बजे. आप अपना ख्याल रखिए और साथ में अगर हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाइए सोशल मीडिया पे, radioolive.qa इज द हैंडल, फॉलो कर लीजिए. यूट्यूब पर भी, टिकटॉक पर भी, स्नैपचैट पर भी, सब जगह फॉलो कर दो, स्पैम कर दो. हाँ जी, और आप जो भी वीडियोज़ वगैरह हम पोस्ट कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, पार्टिसिपेट कीजिए उसमें, यार जीत सकते हो कुछ बड़ी बढ़िया चीज़ें. और फिलहाल भेज रहे एक बहुत बढ़िया गाना बादशाह की आवाज़ में, ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. जी बिंदास मेरी जान.

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बेनोम रन। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे। फाल्कन फिटनेस बेनोम रन, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।

बिल्कुल तेरे लिए, तेरे ही लई जी। सिमरन कौर आ चुकी है और जोन इवनिंग जो है वो शुरू हो चुका है।

रहा। देखो यार, जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है, मैं भी आ चुकी हूँ। आप जहाँ जहाँ पे हो वहाँ वहाँ पे रहिए, जो करना है करिए, लेकिन चार घंटे अपने होने वाले, तो अटेंशन पूरा चाहिए, क्योंकि मैं भी आपको ये चार घंटे सिर्फ आपको ही अटेंशन देने वाली हूँ। सो बहुत सारी बातें करेंगे, मजेदार म्यूजिक होगा, चार घंटे टोटल चिल करना, चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। आपकी हैप्पीनेस की फ्रिक्वेंसी को आप सुन रहे हो, सुनते रहो रेडियो ऑलिव, कहते रहो जियो बिंदास। है जवानी तो इश्क होना है शेखा।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स 6th ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बिन उमरान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे। फाल्कन फिटनेस बिन उमरान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi guys, this is Jonita Gandhi.
5: Radio Olive.
4: You are listening to me on Radio Olive. Gio Binda.
5: Radio Olive, I'm a number one.
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
8: आरजे सिमरन के साथ।
9: This hour is brought to you by
10: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

आपके पास, मेरे पास, बहुत सारे लोगों के पास जो एंड्रॉइड यूजर नहीं है वो आईफोन यूजर है, लेकिन आपको पता है आईफोन में इतने सारे फायदे हैं और इतनी सारी चीजें, इतनी सारी सेटिंग्स हैं जो कि हमको नहीं पता है। लेकिन इन सारी सेटिंग्स के बारे में

0: और एक सेटिंग के लिए बारे में मुझे आज पता लगा। मैं क्या जी सुनियो कहता था कि हालचाल सच श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ जबरदस्त इवनिंग्स में। मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप आईफोन में जो है कोई भी फोटो शेयर करते हैं किसी के साथ, आपने शेयर कर ली तो आप कैसे फोटो शेयर करते हैं? रुकिए मैं अपना मोबाइल जो है वो उठाती हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं एक फोटो जो है वो शेयर कर रही हूँ, वो साइड में एक शेयर वाला बटन होता है ना लेफ्ट साइड में नीचे, ठीक है, एरो सा बना होता है। अब उसमें जब फोटो शेयर करने लगे आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको एयर ड्रॉप करना है, व्हाट्सएप करना है, इंस्टाग्राम करना है, व्हाटएवर। सो सबसे ऊपर वाला एक ऑप्शन रहेगा जहां पे आपने देखा, जहां पर लिखा होगा फोटो शेयर करते हुए वन फोटो सिलेक्टेड, उसमें लोकेशन इज इंक्लूडेड। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी फोटो के साथ आपकी लोकेशन भी जाए, सो उसमें ऑप्शंस हैं जिसमें आप लोकेशन ऑफ करके वो फोटो जो है वो सामने वाले को शेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम फोटो सेंड करते हुए ये चीज जरूर ध्यान में रखना, अगर आप लोकेशन शेयर करने की कोई दिक्कत नहीं है तो इट्स ओके, बट लोकेशन ऑफ करके वो फोटो भेज सकते हो तो सामने वाले को नहीं पता लगेगा ये फोटो कहाँ की है। ओके, सुनते रहो रेडियो ऑलिव को और कहते रहो जियो बिंदास, यू आर वेलकम।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Radio Olive, your happiness frequency. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे,
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: This hour is brought to you by
4: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

ना कभी कभी कुछ सवालों के जवाब ना तुम जानो ना हम, और कभी कभी फिर इट्स ओके, नहीं पता लग रहा है तो ना सही। मुझे नहीं पता ये खटक खटक खटक खटक क्या है, बट करने में बड़ा मजा।

गाने में ज्यादा वाइब थी यार, क्या हो रहा है यार, मुझे कोई नया नया म्यूजिक क्यों नहीं लेके आ रहे हो यार, पुराने सारे गाने उठा उठा के उसको रिमिक्स जो है वो करे जा रहे हो। लेकिन एक चीज जो है, आपको रिमिक्सिंग नहीं करनी है, ठीक है, पार्किंग के टाइम पे अपनी गाड़ियां मॉस्क वाली साइड जो है, जहां पर मॉस्क की पार्किंग बनी हुई है, वहां पर क्या होता है कि अगर आपने प्रेयर अटेंड नहीं कर रहे हो लेकिन आप पार्किंग यूज कर रहे हो अपनी गाड़ी को वहां पे पार्क करने के लिए, तो आपको पता है आपके ऊपर 300 कतरी रियाल का फाइन आ सकता है। मान लीजिए आपने इस अपनी मिस्टेक को रिपीट किया, तो फिर आगे और भी आपके ऊपर और आपके व्हीकल के ऊपर जो है वो एक्शन हो सकता है। सो मेक श्योर कि पहले तो रिपीट वाला तो टाइम ही ना आए, है ना। और आपने ये हरकत करनी नहीं है अगर आप मॉस्क में हो और आपने प्रेयर अटेंड नहीं कर रहे हो लेकिन आप सिर्फ अपनी गाड़ी पार्क करके निकल रहे हो, तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ।

0: CB2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ.
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

हो रहा है कि जून आ गया भाई साहब। ओहो हो, जून जुलाई अगस्त, अगस्त में तो मेरा बर्थडे मंथ आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, ये दो महीने ऐसे चुटकी बजा के निकल जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है ना वो टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है, मंथ बड़ी जल्दी जल्दी निकल रहे हैं।

0: आवारा होने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन बाहर का मौसम चेक करें पहले।
1: मौसम
0: देखो, आवारा से याद आया, आवारा गर्दी। ब्राउन पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनका एक फेवरेट वर्ड होता है, आवारा गर्दी करवा लो इन बच्चों से, है ना। सो या वो भी एक टाइम था जब मम्मी ऐसे ऐसे डांट देती होती थी, लेकिन या अब तो नहीं है। अभी के लिए टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कहता है कि मैं 42 डिग्री सेल्सियस हूँ। भाई तुम फेयर गेम नहीं कर रहे हो। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस एंड 43 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली, और मिनिमम जाएगा 31 डिग्री सेल्सियस। विंड जो है 15 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। ह्यूमिडिटी 18% है भाई। मैं क्या

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive,
1: Gio Windows. Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.

0: एंजॉय का वो करने वाला है. आज जो है वो आर माधवन का हैप्पी वाला बर्थडे, जिनको हम मैडी के नाम से भी जानते हैं. एंड आर माधवन के बारे में पढ़ रही थी कि ये वेजिटेरियन है और इनको ना एक टाइटल दिया गया है बाय पेटा, क्यूटेस्ट मेल वेजिटेरियन. जी हाँ, क्यूटेस्ट मेल वेजिटेरियन तो वो है ही, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार. मतलब इतनी ज़्यादा एज उनकी हो चुकी है बट फिर भी उनके चेहरे पे जो है वो एज दिखाई नहीं देती. जितने ही अट्रैक्टिव वो रहना है तेरे दिल में के टाइम पे थे, अभी भी वो उतने ही अट्रैक्टिव है यार. और बहुत ही कमाल के इंसान भी है. कभी मुझे मिलने का उनसे मौका तो नहीं लगा, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना बहुत है. अभी फिलहाल हम उनका गाना सुनने वाले हैं क्योंकि आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे है. आप आज पूरे दिन में सुन रहे होंगे उनके स्पेशल वाले गाने. ये हमारा तरीका है बर्थडे सेलिब्रेट करने का. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास.
1: फ्रॉम बीइंग चार्मिंग मैडी टू द बाप ऑफ ऑल द रेंडर्स, रेडियो ऑलिव विशेस आर माधवन अ वेरी हैप्पी बर्थडे. सुनिए माधवन के बेस्ट साउंड ट्रैक्स थ्रू आउट द डे ओनली ऑन रेडियो ऑलिव.

जब आप किसी का नाम सुनते हो तो आपको लगता है यार ये नाम मैंने पहले कभी सुना नहीं है। तो अभी हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने हाय लिख के भेजा है, उनका नाम है ज़ूफ़शान मलिक। ज़ूफ़शान मलिक अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप प्लीज मुझे बताइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। आपका नाम जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, काफी ज्यादा यूनिक है। थैंक यू यार।

0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: ऑलिव रिमाइंड में आज ये रेट्रो गाना होने वाला है और ये गाना काफी ज्यादा जब सुनते हो ना तो आपको मोटिवेटेड फील होता है और ऐसा फील होता है कि कोई तो है यार। So, ये गाने तो होंगे होंगे, लेकिन उसके बाद उससे पहले आपके साथ एक बात करनी है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: वायरल में एक इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उस इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो है MOAPIES, जी हाँ MOAPIES। ये अकाउंट है इंस्टाग्राम का जिसमें 28 मिलियन पोस्ट हैं और अराउंड 78.9K उसके फॉलोअर्स हैं और फॉलोइंग लिस्ट में आई गेस 4 फॉलोअर्स हैं। अब मतलब इसको इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि किसी भी तरीके से, मतलब फिजिकली इट्स इम्पॉसिबल, लाइक एक सिंगल प्रोफाइल पे इतना सारा कंटेंट, 28 मिलियन पोस्ट जो है वो अपलोड करना वो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। सो बहुत सारे लोग जो है वो ये बोल रहे हैं कि ये प्रोफाइल में, क्योंकि इसका जो स्टेटस है वो बिल्कुल प्राइवेट है तो आप इसके फॉलोअर्स जो है वो नहीं देख पाएंगे क्योंकि 2-3 या 4 इसको फॉलो कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि ये एक टेक्निकल ग्लिच है और या फिर कोई हैक है जिसकी वजह से ये 28 मिलियन पोस्ट तो दिख रही हैं बट ऐसा हो नहीं सकता है। क्या आपने चेकआउट किया? चेक करो जाके MOAPIES।

0: ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे। लगभग 10,000 साल पहले तक सारे के सारे इंसान लैक्टोस इंटॉलरेंट थे, बिल्कुल सही सुना आपने। मगर फिर ये चेंज कैसे आया? ये चेंज आया एवोल्यूशन के कारण। जब इंसान ने हर्डिंग शुरू की तो हमारे एंसेस्टर्स के डीएनए में एक रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसने बॉडी का मिल्क डाइजेस्टिंग स्विच हमेशा के लिए ऑन छोड़ दिया, और जब अकाल पड़ा तब यही स्टेराइल दूध लोगों के लिए अल्टीमेट लाइफ सेवर बन गया। जिनके पास ये म्यूटेंट जीन था वो सर्वाइव कर गए और उन्हें मिला एक कमाल का सर्वाइवल एज। और अगर वो जेनेटिक म्यूटेशन ना हुआ होता तो आज आपके लाइफ में चाय, पनीर, खीर, सेवई और चीज जैसी चीज नहीं होती। तो मनाइए हैप्पी वर्ल्ड मिल्क डे।
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ।
3: This hour is brought to you by
2: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: कौड़ियों की दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। यहाँ पर तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: आपका किसी के साथ दोस्ती का रिश्ता जो है वो जब बनता है या प्यार का रिश्ता बनता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हमेशा के लिए चले। बहुत लकी लोग होते हैं वो जिनका रिश्ता जो है अगर बना तो वो चला, लेकिन कभी कभी उन रिश्तों में जो है वो ऊपर नीचे भी चीजें जो है वो होती रहती हैं, दोस्ती हो या प्यार हो, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब मेरा एक लाइफ का रूल है कि चाहे प्यार हो चाहे दोस्ती हो, मैं बहुत करती हूँ यार। मैं सामने वाले का, मतलब मुझे अगर वो पता है ना कि वो इंसान मेरे लिए सही है ना, कभी कभी आपको ही सही लगता है, बाद में चीजें सही होती नहीं है, मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन मेरे लिए ये आ जाता है कि जब सामने वाला अपने रंग जो है वो दिखाने स्टार्ट करता है ना, फिर वो एक बेटरनेस जो है वो किसी भी रिश्ते में जो है वो आ जाती है। बट ओवर द टाइम जब चीज़ें जो है वो आपकी ख़राब हुई हैं, फिर आपका थोड़ा यू नो दोस्ती या प्यार में सेपरेशन हुआ है, फिर वो सामने वाला इंसान रियलाइज करता है कि यार इस इंसान ने मेरा बहुत ज़्यादा किया है, या इस लड़की ने या इस लड़के ने मेरा बहुत ज़्यादा किया है। फिर जब एक सेपरेशन होती है ना, फिर वो रियलाइज होता है। फिर वो इंसान को जब वो रियलाइजेशन होती है, वहाँ पर मैं कन्फ्यूज़ होती हूँ कि वो इंसान जब लौट के आपके पास आए तो उसका क्या किया जाना चाहिए। इस सिचुएशन में आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते होंगे ना। बहुत सारे लोग हैं वो आपकी जिंदगी से जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं यार ये है वो है, लेकिन जब वो जिंदगी से इधर उधर धक्के खा के आते हैं वापस तो उनको लगता है आप ही अच्छे हो। तो ऐसे लोगों के साथ वापस से जिंदगी में उनको आने देना चाहिए या फिर अलग हैं तो अलग ही बेहतर है। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कॉल, कहते रहिए जियो बिंदास। आपका क्या कहना है बताओ मुझे।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है। फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर
0: ये गाना। ये लो जी, इसको भी कर दिया रिमिक्स। वेलकम टू जंगल, अक्षय कुमार की फिल्म। अगेन अक्षय कुमार उच्चा लंबा कद फॉर

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

जब गाना चल रहा होता है और इमोशनल होके फ्लो फ्लो में मैं गाना गाना चालू करती हूँ, गाना खत्म हो चुका है, फिर मुझे पता लगता है हाय कितना गंदा गाती हूँ सिमरन कौर। सुरीले उनके सामने आप थोड़ा सा अपने तरीके का सुर लगाने की कोशिश करो तो उनकी भी हंसी दिल ही दिल में निकल जाती होगी। पर ऐसे इंसान अच्छे होते हैं, जैसे कि सुदेव है, अच्छा गाना गाता है, अच्छे सुर लग जाते हैं, उसके सामने मैं गलत भी गा दूंगी तो बेचारा कुछ नहीं बोलेगा। मैं कहीं सुनियो कि दादी की हालचाल सत श्री अकाल। सिमरन कौर है आपके साथ। सो क्या थी, शादी रखी हुई थी, दूल्हा दुल्हन थे, उनकी फैमिली आई हुई थी, सब कुछ था। अब क्या है कि जो ब्राइड थी ना, उसने शादी कैंसिल कर दी, कहती भाई मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि उसका ये कहना था कि जो ग्रूम की फैमिली थी ना, उन्होंने उसका जो डॉग था उसको मिसट्रीट किया, उसको मारा, तो इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और उसने शादी जो थी वो तोड़ दी। एक्चुअली यार सही है कि जो भी जिस भी जानवर को आप पेट करते हो है ना, या फिर कोई पंछी है, वो आपकी फैमिली की तरह हो जाता है, आपके बच्चे की तरह हो जाता है यार। आप मतलब उसको मार रहे हो, मिसट्रीट कर रहे हो, तो फिर भाई साहब देखना, इसी से समझ लगता है कि भाई शादी से पहले निकल लो, अच्छे इंसान नहीं है यार। वापस लौट के जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि कोई इंसान आपकी लाइफ में होता है, फिर वो चला जाता है, फिर उसको लगता है कि बाकी सब धक्के दे रहे हैं, तो वापस लौट के आता है क्या? ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में रख लेना चाहिए।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में. फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स्थ ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बेनोम रन. इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सीआर सलीम और रोशन बशीर. ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे. फाल्कन फिटनेस बेनोम रन, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन. आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे,
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: This hour is brought to you by
7: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: और रोमांटिक हाँ थोड़ी देर पहले जब मैंने रियलिटी चेक के बारे में बताया था आपको कि कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में, चाहे दोस्त है चाहे प्यार है, और आप उनके लिए बहुत करते हो, वो आपका मानते भी बहुत है, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है जब उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं नहीं आप बेहतर नहीं हो, बाकी लोग जो हैं वो बेहतर हैं, तो ऐसे बीच में आप लोगों का सेपरेशन हो जाता है ना। फिर उसके बाद जब वो दुनिया से बाहर लात और धक्का खा के आते हैं फिर उनको लगता है कि नहीं यार आप ही अच्छे थे, तो ऐसे टाइम पे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उनको एक्सेस दे देना चाहिए वापस से अपनी लाइफ का या फिर नहीं?
1: तो सिमरन गुड इवनिंग,
0: मेरी गुड इवनिंग।
1: आप जो अभी बात कर रहे थे उसके बारे में बात करना चाहूँ तो मैं तो ये कहूँगी कि जो लोग अपनी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत कीमती होते हैं, आप उनकी बहुत कदर करते हैं और उनको बहुत इज्जत से और एहतराम से प्यार से अपने साथ रखते हैं, तो वो आपकी कदर नहीं करते और वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो एक बात ये है कि जो रिलेशनशिप्स होती है ना इसमें ओनली मिनिमल इज रिक्वायर्ड, यानी कि ये नहीं है कि आप उसको गोल रोटियां बना के खिलाओगे तो वो आपको पसंद करेगा या आपके साथ वापस जुड़ना चाहेगा, तो इस सब की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक बीच में एहतराम का जो रिश्ता होना चाहिए वो होना चाहिए। और वैसे भी जो लोग कहा जाता है कि जो लोग चले जाएं तो वो चले जाएं, लेकिन अगर वो वापस आ जाएं तो वो आपके अपने हैं। तो मैं तो बस यही समझती हूँ कि वो लोग जो होते हैं वो सच्चे होते हैं जो वापस लौटते हैं।
0: मैं समझ गई आसमा जी आपकी बात, लेकिन थोड़ा सा डिबेटेबल है, अगर कोई इंसान जा रहा है उसने छोड़ के जाने की आपको कोशिश की और वो चला गया तो वो आपका अपना है ही नहीं है, उसके माइंड में पहले ही ऑप्शंस चल रही हैं, जब ऑप्शंस से धक्का मिलता है तब वो आपके पास आते हो, आप सच्चे हो क्योंकि आप अभी भी उसी स्टेज पे खड़े हो उस इंसान के लिए, तो वो सच्चे नहीं है आप सच्चे हो, मुझे ऐसा लगता है। इट्स डिबेटेबल। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: This hour is brought to you by
6: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: जान जो टॉपिक चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे थे कि आपका कोई समवन स्पेशल या फिर आपका फैमिली मेंबर या कोई भी आपके नजदीकी जो भी है ना, कभी कभी आप और वो आपका बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कभी कभी रिश्तों में जो है वो कुछ कड़वाहट आ जाती है, उनको लगता है कि आपसे बेहतर कोई और है, तो वो आपको जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब उनको बाकी दुनिया से धक्के मिलते हैं तो उनको समझ लगता है कि नहीं यार, ये मेरी फैमिली या फिर मेरा दोस्त या मेरा प्यार ही सही था मेरे लिए, फिर वो आपके पास वापस दौड़ के आते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन ये बन जाता है कि फिर क्या ऐसे लोगों को आपको मौका देना चाहिए।
1: इमरान, मैं हूँ आपकी लिसनर नताशा।
0: हाँ जी,
1: तो जो अभी आसमा ने जवाब दिया उससे तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, पर जो आपने कहा बिल्कुल सही
0: जी।
1: बट पता है क्या प्रॉब्लम क्या है कि दोस्त हो कोई अननोन हो और चला जाए ना, बुरा नहीं लगता, चला गया तो चला गया।
0: हाँ जी।
1: बट यही चीज अगर हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने भाई बहन करें, फिर बहुत बुरा लगता है।
0: यस।
1: तो क्या हम वापस क्या सेम रहते हैं? वो वापस तो आएंगे, हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, बट एक वो रिश्ता जो पहले एक प्योर रिश्ता था वो सेम नहीं रहता। कुछ ना कुछ तो बीच में गैप आ ही जाता है, तो हर चीज सेम नहीं रहती। जैसे कहते हैं ना, कांच तो टूट गया, जितना मर्जी जोड़ लो, दरारें तो रह ही जाती हैं। सो जियो बिंदास, बाय बाय।
0: जियो बिंदास, थैंक यू सो मच नताशा शेयर करने के लिए। यस, मैं मानती हूँ कि फैमिली मेंबर के साथ जो है ना वो औखा हो जाता है, लेकिन यस ऑफकोर्स वो गैप जो है वो आ जाता है। फिर ये होता है कि वो जो पहले जितना रिश्ता था ना, फिर सामने वाले को भी पता है जो गया था एक टाइम पे, कि अब आप जो है उसके लिए सेम नहीं हो सकते, तो वो आप पे उतना हक भी नहीं जता सकता है, और आप जो कर रहे हो एक स्टेप पीछे ले लेते हो ना, फिर आप भी, आपको भी पता है कि आप क्या कर रहे हो और सामने वाले को पता है कि उसने क्या किया था और किस वजह से ये हुआ है। सो या ये थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, इसीलिए मैंने बोला इट्स डिबेटेबल।
2: From being charming Maddie to the bop of all the renders, Radio Olive wishes R. Madhavan a very happy birthday. Suniye Madhavan ke best soundtracks throughout the day only on Radio Olive.
0: वापस लौट के बहुत ही अमेजिंग आंसर जो है नीलेश ने मुझे भेजा है, मैं वो शेयर करूंगी। फिलहाल तो ये दिल विल प्यार व्यार में जो एक फिल्म आई थी जिसमें माधवन थे और बड़े क्यूट लग रहे थे यार, वैसे तो क्यूट है ही वो, इसमें और भी ज्यादा क्यूट लग रहे थे, तो ये गाना उनके बर्थडे पे आप इंजॉय करिए, मैं भी इंजॉय करती हूँ।

0: क्या क्यूट गाना है यार. कोई इंसान आपकी लाइफ में होता है, चाहे वो प्यार है, चाहे दोस्त है, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेंबर है. कभी कभी क्या होता है कि वो इंसान जो है कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं. जब उनको ये एहसास होता है कि नहीं यार, बाहर के लोग बाहर के होते हैं, जो आप थे, जो आपने उनको ट्रीटमेंट दिया, जो आपने उनको प्यार दिया, वो सिर्फ आप ही दे सकते हो, फिर वो आपके पास वापस लौट के आते हैं. अब सवाल ये उठता है कि जब वो आपके पास वापस लौट के आए तो ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए. दोस्त और प्यार, इसको आप नकार सकते हो, लेकिन फैमिली वालों को नहीं आप नकार सकते हो. लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए
1: सिमरन जी? अगर ऐसा कोई आदमी छोड़ के आपको जा रहा है,
0: हाँ हाँ,
1: पहली बात तो वो गया क्यों, फिर वापस क्यों आया? ठीक है ना, ऐसा आदमी को एक्सेप्ट नहीं करने का सबसे पहली बात तो ये. अगर आ जाए तो उसको बुलाने का और कॉर्निश में लेके जाके धक्का दे.
0: अरे बाबा रे,
1: यो बिंदास.
0: अरे यार, ये क्या बात कर रहे हो यार. सो यस, जोक्स अपार्ट, बट यस, ये टफ हो जाता है यार जब फैमिली बीच में इंक्लूड हो जाती है, तो फिर बहुत दिक्कतें होती है. लेकिन या कोई दोस्त हो अगर वो ऐसा करे जिसको लगे कि यार आपसे बेहतर तो बहुत मिलेंगे, और फिर जब ना मिले तो बेहतर लौट के आए, तो फिर आप अलग कर सकते हो, प्यार को भी अलग कर सकते हो, भाई भाड़ में जा कर सकते हो, लेकिन फैमिली को नहीं कर सकते हो यार. बट फैमिली को जरूरत ही क्यों पड़ी आपसे दूर जाने की? उनको ये क्यों नहीं लगा कि फैमिली तो फैमिली होती है यार. लेकिन ये भी बात है कि फैमिली में भी टॉक्सिसिटी होती है, सिर्फ दोस्तों में या प्यार में नहीं होती है, पार्टनर में नहीं होती है, हर जगह पे हर सीन है. आजकल क्या है कि फैमिली वाले बहुत कम है जो इकट्ठे मिलके बड़े प्यार से रह रहे हैं. आधे से ज्यादा ये लोग सोचते हैं कि फैमिली है, प्यार है, पर जितनी दूरी बनी रहे उतने ज्यादा ठीक है, क्योंकि साथ रहेंगे तो कलेश होंगे.

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओली 106.3 FM।

आज से हम एक नई गेम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी नेम गेम होने वाला है, उसके बाद वापस लौटूंगी। ये म्यूजिक गेम है, आपको अच्छा लगेगा। वो गेम हम वापस लौट के खेलेंगे, लेकिन पहले नाम लेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अभी के अभी रेडियो पे बोलूं, तो आप अभी के अभी अपना नाम टाइप करके और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 3311063। जी हाँ, 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेजिए। चलिए अब मैं आप नाम बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। सैमी, इलीस, संधू, रेशम, नजिला, नीलेश, नताशा, आसमा, शिव, जितेंद्र, एलिस, साकिब, सैफी, धवोज, विक्रम, आई होप मैं आपका नाम सही से ले रही हूँ, नोबल, नबील, कुरेशी, अली, वहीद, निशा, थैंक यू सो मच, अमित, थैंक यू सो मच, सुनीता, थैंक यू सो मच, जुल्फी, थैंक यू सो मच, अब्रार, थैंक यू सो मच, नजीमुल्ला, थैंक यू सो मच, रानी, थैंक यू सो मच, परशुराम, थैंक यू सो मच। 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम लिख के भेजना है, मुझे व्हाट्सएप करिए। रेशम जी, थैंक यू सो मच, सरिता जी, थैंक यू सो मच, डेजी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें कनाडा से सुन रही है। अदनान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। वाहिद जी, थैंक यू सो मच, इवान, थैंक यू सो मच, फैजल, थैंक यू सो मच, राहुल, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। दोस्त, नो हाई नो हेलो, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखो यार। शाबाज गुलजी, थैंक यू सो मच, मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रिहान, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम बोल दिया, अब आप थैंक यू लिख के भेज सकते हैं और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी। वापस लौट के नई म्यूजिक गेम खेलते हैं आज। अगर आप बॉलीवुड लवर हैं तो अच्छी लगेगी आपको।

0: Hi, मैं हूँ सोहाली खान and you're listening to Radio Olive. Jio Bindas.
1: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

कोई गाना अगर आपके दिल के बेहद करीब होता है, जिसको आप कभी भी सुनना पसंद करते हो, आपका ऑल टाइम फेवरेट होता है, ये गाना उनमें से एक है। 2, 1 एंड गो।

0: सुकून मिल जाता है यार कुछ गाने सुन के, और भी आएंगे। और एक गाना मैडी के नाम, यानी कि माधवन के नाम, आज उनका बर्थडे है। यार चलो, आज से हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी आप बॉलीवुड लवर हैं, जितने भी अभी रेडियो सुन रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप बॉलीवुड लवर हैं, और इस सेगमेंट का नाम है
1: रेडियो ऑलिव पर एक चुटकी सॉन्ग।
2: बहुत बढ़िया।
0: बिल्कुल, देखो एक चुटकी सिंदूर नहीं, ये एक चुटकी सॉन्ग है। सो गाने की मैं आपको एक चुटकी ही सुनाने वाली हूँ, मतलब आपको मुझे वो गाना गेस करना है। अब जितने भी बॉलीवुड लवर हैं, उनको एक चुटकी यानी कि एक ही सेकंड का गाना आप अगर सुनाएंगे तो वो पहचान जाएंगे, लेकिन ये जानना है कि पहचानते कितने लोग हैं। तो मैं आपको एक चुटकी गाना सुना रही हूँ, बताओ ये कौन सा गाना है, एक बार वापिस से। सो एक चुटकी गाना बताइए कौन सा है। 3311063 पर आपने मुझे वॉइस नोट भेजना चाहिए तो आप गाना गा के भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं, अपने नाम के साथ बताइएगा। बट रूल ये भी है कि अगर आपको नहीं पता है तो बोल दीजिएगा मेरा नाम ये है और मुझे नहीं पता है। 3311063 पे बताओ ना यार।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या पर ये बात है,
0: जो लोग मुझे लिख के भेज रहे हैं, प्लीज मत लिख के भेजिए, वॉइस नोट भेजो दोस्त अपने नाम के साथ और गाना बोल के बताओ या गा के बताओ। और एपी डी लोधी आवाज दे विच बड़ा प्यारा गाना यार, सोचा तेरे बारे, बड़ा वायरल हो रहा है गाना। 3, 2, 1 एंड गो।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ।
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: क्या बवाल है यार ये गाना, फिल्म भी अच्छी है यार। टू स्टेट से आप ये गाना सुन रहे हैं। सिमरन कौर आओगी
1: जल्दी है, तुम कहाँ पे देखो यहाँ के रास्तों में।
0: और आप लोगों के लिए एक नंबर गेम स्टार्ट किया, आज नया सेगमेंट स्टार्ट किया हम लोगों ने
2: रेडियो ऑलिव पर।
3: बहुत बढ़िया।
0: बिल्कुल, एक चुटकी सॉन्ग मैं आपको सुनाती हूँ और आपने वो गाना गेस करना होता है। So, बड़ा मजा है यार आप लोगों के जवाब सुन के।
4: Hi, my name is Asia. Song name is Satya, तूने क्या किया?
0: Thank you.
5: Hello, मेरा नाम हेमा है और ये सॉन्ग है वो सातिया ये तूने क्या किया।
6: Hi, my name is Anjali and गाना है सातिया तूने क्या किया। Thank you so much, dear. Bye.
0: Thank you.
7: जियो बिंदास, फैसल है यार।
0: हाँ जी।
7: साथिया तूने क्या किया,
0: ओहो
7: बेलिया ये तूने क्या कहा, मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार।
0: क्या बात।
5: हेलो सिमरन, मेरा नाम है रेशमा।
0: हाँ जी।
5: एंड एक चुटकी वाला जो सॉन्ग था अभी वाला वो है

0: इतना करो ना मुझे प्यार, लव यू 100 किलो, हैव अ गुड नाइट सिमरन जी,
1: लव यू टू 100 किलो यार, इतने क्यूट क्यूट हो यार आप लोग। तो कल फिर से खेलेंगे गेम, आप लोगों को समझ लग गई, और अब मैं कोशिश करूंगी कि टफ से टफ गाना आप लोगों के लिए लेके आऊं और आपकी बॉलीवुड की नॉलेज को चेक करूं। सुन रही है रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जी हो बिंदास, फ्रॉम बीइंग चार्मिंग मैडी टू द बाप ऑफ ऑल द रेंडर्स, रेडियो ऑलिव विशेस आर माधवन अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सुनिए माधवन के बेस्ट साउंड ट्रैक्स throughout the day only on Radio Olive.

0: ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे
1: स्टोरी ऑफ द डे। लगभग 10,000 साल पहले तक सारे के सारे इंसान लैक्टोस इंटॉलरेंट थे, बिल्कुल सही सुना आपने। मगर फिर ये चेंज कैसे आया? ये चेंज आया एवोल्यूशन के कारण। जब इंसान ने हर्डिंग शुरू की तो हमारे एंसेस्टर्स के डीएनए में एक रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसने बॉडी का मिल्क डाइजेस्टिंग स्विच हमेशा के लिए ऑन छोड़ दिया, और जब अकाल पड़ा तब यही स्टेराइल दूध लोगों के लिए अल्टीमेट लाइफ सेवर बन गया। जिनके पास ये म्यूटेंट जीन था वो सर्वाइव कर गए और उन्हें मिला एक कमाल का सर्वाइवल एज। और अगर वो जेनेटिक म्यूटेशन ना हुआ होता तो आज आपके लाइफ में चाय, पनीर, खीर, सेवई और चीज जैसी चीज नहीं होती। तो मनाइए हैप्पी वर्ल्ड मिल्क डे।
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
3: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: This hour is brought to you by
7: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

जी चलिए, तुम कहाँ पे? मैं कहाँ पे जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ घर पे. घर पे नहीं जा रही हूँ, एक्चुअली एक फिल्म देखने जा रही हूँ. जिसके बारे में सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा बात हो रही है कि मेरे को पीर प्रेशर हो गया और मेरे को लग रहा है कि इस फिल्म को देखना पड़ेगा. फिल्म का नाम है ऑब्सेशन. एग्जैक्टली. इस फिल्म के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी जब मैं देख लूंगी मेरे को कैसी लगती है, आपको देखनी चाहिए या जो भी है मैं बताऊंगी. ठीक है, अगले दो घंटे मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिए. कल 5 बजे शाम को जबरदस्त इवनिंग्स में होती है आपसे मुलाकात. टिल देन खाने में देर ऐश कर दे रो, चेहरे दे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना. बी नाइस टू एवरीवन यार. गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में. फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बिन उमरान. इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर. ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे. फाल्कन फिटनेस बिन उमरान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.

मेरा मानना है कि मौसम कोई सा भी हो, सर्दी का या गर्मी का, लेकिन उनके टाइम पे जो नॉस्टैल्जिया वाली यादें हैं ना, वो बहुत याद आती है। ऐसे ही इंस्टाग्राम की कुछ रील्स हैं जो दिन भर मेरे फोन में आती हैं और मुझको वापस से मेरे बचपन तक पहुंचाती हैं। हे हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपकी दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑल पर मिडनाइट लाउंज के सफर में फिलहाल मैं आ चुका हूँ आपके साथ। कैसे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं आप, ये जरूर बताइएगा मुझे। और फिलहाल आप अपना बोरी बिस्तर लेके घर की ओर जा रहे हैं और मैं अपना बोरी बिस्तर लेकर आ चुका हूँ आपके इस वक्त गाड़ी में। अगर आप मुझे सुन रहे हैं घर से सुन रहे हैं या फिर रोड पे वॉक करते हुए मुझे सुन रहे हैं, नाइट वॉक का वैसे सबसे अच्छा साथी और प्यारी प्यारी बातें, तो चलिए साथ में मिलकर करते हैं ढेर सारी गपशप, ढेर सारे गानों को फील करते हैं, प्यारी प्यारी धुनों को एक साथ गुनगुनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ और फिर वापस आकर करते हैं बातों का सिलसिला शुरू। तब तक जियो बिंदास।

0: देखो कोई सा तो एक अकाउंट होगा जो तुमने या तो सेव कर रखा होगा या ऐसा कोई एक दोस्त होगा जिसको तुम सारी रील्स भेजते हो या खुद की चैट को वापस से वो सारी रील्स भेजते हो जिनको तुमने कभी वापस जाकर देखा ही नहीं। क्या सोच के देख रखी थी वो सारी रील्स सेव, ये कभी तो देखेंगे यार, लेकिन वो रील बस रील ऑफ द डे बन के रह जाती।
1: रील रील वाली रियल कहानी।
0: हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। रील वाली रियल कहानी में तो जनाब कहानियां हैं आपकी रील्स की जो आप सेव करते हो रील ऑफ द डे समझकर, यानी कि आपको एक रील पसंद नहीं आती जनाब, दिक्कत यही तो है। अब आपकी दिक्कत नहीं है, मेरी भी दिक्कत है, हम सबकी दिक्कत है। हम लोग एक चैट होती है उसको, या तो कोई ऐसा अकाउंट होता है जो बहुत पहले पुराना हमारा होता है, जो डेड अकाउंट जिसे हम कह सकते हैं, या फिर एक वो अकाउंट जो हमारे दोस्त का होता है, चलो वो तो रिलेटेबल रील्स हम उसको शेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ रील्स होती है जो अपने जिम वर्कआउट की या फिर कोई कुकिंग टिप्स के लिए होती है, या फिर आगे फ्यूचर प्लानिंग को रखकर हम सोचते हैं कि कल को हमारा घर होगा तो उसमें ऐसी चीजें, ऐसे कपबोर्ड्स बनवाएंगे, ऐसी चीजें हम यू नो उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कराएंगे, घर के अंदर इंटीरियर कराएंगे, वो रील्स अपने आपको सेव करते हैं, या फिर कोई गाना, कल को एक ऐसी रील हम खुद बनाएंगे गाने के साथ, तो वो सब शेयर अपने आप को करते हैं या फिर उस अकाउंट को करते हैं, लेकिन कभी वापस आपने ऊपर जाकर, अगर आप लिटरली बता रहा हूं आज वापस से अभी के अभी जहां पे भी आप हो, एक बार वापस उस चैट को खोलो और आज से सिर्फ 10 दिन पुरानी हूँ रील्स देखो जो आपने सोच के साथ शेयर करी थी कि कभी मैं देखूंगा। चलो कोई नहीं, फ्यूचर के लिए सोची होगी, लेकिन क्या आपको लगता है सच में कि आपने हर एक रील पे काम किया? तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, आज की जो बेस्ट रील आपको मिली आप मुझे शेयर करो, क्योंकि कभी हमारी बार बार बात होगी ना तो मैं आपको बार बार पूछा करूंगा यार ये वाली रील पे काम किया। आप रील भेजो मुझे, इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और वो रील भेजो। बाकी देखो गपशप का सिलसिला यहीं से शुरू हो जाएगा जना, पहले आप छोड़ो, पहले मैं यहाँ से प्यारा सा गाना चलाता हूँ आपके लिए, कहीं जाएगा नहीं, सुंदरी रेडियो ऑलिव, दिल से कहते रहिए जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बेनोम रान इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सिया सलीम और रोशन बशीर ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे फाल्कन फिटनेस बेनोम रान वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

Flashback. Hey, hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर. चलो चलते हैं मिडनाइट लाउंज के फिल्मी फ्लैशबैक के सफर में. चलिए आज के फिल्मी फ्लैशबैक में बात करते हैं मजेदार ट्रिविया की. सवाल भी आपके लिए, विद्या बालन और शाहिद कपूर की डेब्यूट बॉलीवुड मूवी कौन सी थी? चलो ऑप्शन चाहिए, परिणीता एंड इश्क विश्क, या फिर कहानी एंड विवाह, या फिर डर्टी पिक्चर एंड फिदा. थोड़ा सोचिए, 5, 4, 3, 2, 1. वैसे विद्या बालन ने अपनी बॉलीवुड जर्नी परिणीता से शुरू की थी और शाहिद कपूर ने चॉकलेट बॉय इमेज के साथ इश्क विश्क से एंट्री मारी थी. तो सही जवाब है परिणीता एंड इश्क विश्क. और देखिए कमाल की बात ये कि एक ने पावरफुल परफॉर्मेंसेस से दिल जीता और दूसरे ने डांस, रोमांस और चार्म से लाखों फैंस बना दिए. नहीं वैसे अगर आपको शाहिद कपूर और विद्या बालन के करियर की सिर्फ एक मूवी चूज करनी हो तो आप किस मूवी को उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस मानेंगे? डोंट से किस्मत कनेक्शन. वो कोई किस्मत कनेक्शन नहीं था. वैसे मैसेज कीजिए और बताइए जल्दी से, इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑल एफ का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश. क्या आपकी भी लाइफ में कभी किसी से कोई किस्मत कनेक्शन हुआ है? इसके बारे में कभी विस्तार से अच्छे से बात करेंगे. अभी तो फिलहाल आप जल्दी से इंस्टा पे आइए, मैसेज कर जाइए और झट से इस म्यूजिक को, मतलब जो आने वाला ट्रैक है, इसको अपने साथ गुनगुनाइए और अपनी ही आवाज में इस गाने को गाकर मुझे इंस्टाग्राम पे भेज जाइए. जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

Flashback. Hey, hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑल पर मिडनाइट लाउंज के सफर में हम आ चुके हैं फिल्मी फ्लैशबैक के कनेक्शंस में। मेरे कहने का मतलब है फिल्मी फ्लैशबैक के किस्मत कनेक्शन के इन लम्हों में। आज के फिल्मी फ्लैशबैक में हम बात कर रहे हैं किस्मत कनेक्शन की। जी, अभी कुछ देर पहले विद्या बालन जी और शाहिद कपूर जी का नाम जब आया ही है जुबा पे तो उस बारे में बात ही हो जाए। मूवी में शाहिद कपूर का करेक्टर मानता था कि उसकी किस्मत उसके साथ नहीं है और फिर एंट्री होती है विद्या बालन की जिसे वो अपना लकी चार्म समझने लग जाता है। अब वक्त है आज के ट्रिविया का। सवाल आपसे, किस्मत कनेक्शन मूवी को किस फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था? पहला ऑप्शन इम्तियाज अली, सेकंड ऑप्शन अजीज मिर्जा और थर्ड ऑप्शन राजकुमार हैरानी। सोचिए और जल्दी से इंटरेस्टिंग सा जवाब दीजिए। वैसे इंटरेस्टिंग सा जवाब सिर्फ नाम नहीं, आपकी कोई दिल की बात भी हो सकती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि शाहिद कपूर और विद्या बालन की जोड़ी को इस फिल्म में पहली और आखिरी बार साथ देखा गया था। आपको कैसी लगी थी जोड़ी? क्या आप लकी चार्म पर बिलीव करते हैं? ये भी जरूर बताइएगा। कोई लकी पिन, लकी ड्रेस, लकी नंबर या कोई ऐसा इंसान जिसके मिलने के बाद से आपको लगता है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाता है और वो नहीं होता तो सब कुछ बेकार हो जाता है। मैसेज कीजिए और बताइए। मैं हूँ आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज। अभी फिलहाल इस प्यारे से ट्रैक के साथ सी यू बिंदास।

0: अक्सर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते कुछ लाइन सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है या फिर खुद ब खुद महसूस हो जाती है। रिलेटेबल यार।
1: डिजिटल डायरी।
0: Hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में पलट दिया है जनाब मैंने डिजिटल डायरी का पन्ना। क्या खूब लिखा है कि तुझ पर हक था तब तक शक था, अब ना हक है और ना शक है। कितनी अजीब बात है ना, जब कोई अपना होता है तो उसकी फिक्र भी होती है, उसकी आदत ऊपर नाराजगी भी होती है और कभी कभी उसी फिक्र का नाम शक पड़ जाता है। लेकिन जब रिश्ते बदल जाते हैं, दूरियां आ जाती हैं, फिर ना सवाल बचते हैं ना जवाब, बस एक खामोशी रह जाती है। और उस खामोशी का सबसे अजीब हिस्सा ये होता है कि अब आपको जानने का हक भी नहीं होता और पूछने की वजह भी नहीं। आपके हिसाब से किसी रिश्ते में सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? झूठ का, दूरी का, या फिर उस एहसास का कि अब पूछने का हक ही नहीं रहा? मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पर रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और आपका जवाब, आपका दिल क्या कहता है। मैं हूं आरजे आकाश और मैं मानता हूं कि कुछ रिश्ते टूट कर खत्म नहीं होते, बस इतना दूर चले जाते हैं कि उन पर ना हक रहता है ना शक। रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

देखो ये अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि प्यार होना चाहिए यार प्यार होना ही नहीं चाहिए, सबसे बेकार चीज है प्यार। अब दो टाइप के जवाब मिलेंगे, वो कोई कहेगा कि यार बिल्कुल होना चाहिए, वो होगा तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद आप प्यार नहीं करोगे एटलीस्ट। लेकिन हाँ, और ना हुआ कहने वाले मिलेंगे बढ़िया है, लेकिन कुछ कहेंगे नहीं यार एक बार तो होना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में एक कहानी ऐसी जरूर होती है जिसका नाम सुनते ही ना चेहरे पर मुस्कान और दिल में हल्का सा दर्द आ जाता है। जी हाँ, हाय दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज में, और बारी है एक रात एक कहानी की। एक लड़का था, उसे पहली बार किसी का इंतजार अच्छा लगने लगा था। फोन की रिंगटोन सुनते ही दिल तेज धड़कने भी लगा था और स्कूल कॉलेज या ऑफिस जाने की वजह भी अचानक खास लगने लगी थी। उसे लगता था शायद यही मोहब्बत है और शायद वही उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन वक्त गुजरा, रास्ते बदले, लोग बदले और कहानी भी, पर एक चीज कभी नहीं बदली, पहला प्यार। भले ही जिंदगी भर साथ ना रहे, लेकिन उसकी याद अक्सर जिंदगी भर साथ रहती है। अग्री करते हैं कि नहीं? क्योंकि पहला प्यार हम सिर्फ किसी और को नहीं, खुद को पहली बार उस नजर से देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप पहली बार समझ पाते हैं कि प्यार होता क्या है। तो आज का सवाल मेरा एक आपसे था, आपको अपने पहले प्यार की सबसे प्यारी बात कौन सी याद है? पहली बात या पहला मैसेज, या फिर वो पहली बार जब दिल ने कहा था हाँ यार शायद यही है वो इंसान जिसकी, मतलब प्यार की एक डेफिनेशन मेरी लाइफ में हो सकती है। जल्दी से जवाब दीजिए, इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, मैं हूं आरजे आकाश। और बाकी मेरा मानना है कि कुछ लोग जिंदगी में रह जाते हैं और कुछ यादों में। पहला प्यार अक्सर दोनों जगह दिल में जाता है। स्टे ट्यून्ड।

आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: कभी कभी हम किसी इंसान को इतनी अहमियत दे देते हैं कि उसके बिना अपनी खुशी भी अधूरी लगने लग जाती है. अग्री
1: यू शुड नो बिफोर यू स्लीप.
0: Hey, hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज Midnight Lounge में. और बिफोर यू स्लीप आज की रात खुद से एक सवाल जरूर पूछेगा, क्या सच में वो इतना जरूरी है? वो इंसान, वो जिसके मैसेज का इंतजार करते रहते हो, वो बात जो बार बार दिमाग में आती रहती है, और वो याद जिसे आप छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते, क्या सच में वो इतनी जरूरी है? या फिर हम ही उससे अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा जगह दे रहे हैं? और दिल पे हाथ रख के पूछोगे ना तो दिल भी एक जवाब तो पक्का देगा. इंसान खास था जिसकी याद आती है, लेकिन उससे भी ज्यादा खास है अपना सुकून. और जब हम अपने पीस को किसी और की प्रेजेंस से जोड़ देते हैं ना, तो फिर उनके जाने के बाद सब कुछ खाली लगने लग जाता है. आज सोने से पहले बस इतना याद रखना, जो चीजें आपकी खुशी छीन लेना शायद वो उतनी जरूरी नहीं है जितना आप सोच रहे हो. समझे? मैं हूं आरजे आकाश, और मेरा मानना है कि कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं और कुछ सवाल ही हमें जवाब दे जाते हैं. तो जाइए एक मुस्कान के साथ, उसको भूलने की कोशिश कीजिए. वो करीना कपूर क्या करती है, सेल्फ लव, वो सबसे पहले जरूरी है. हारो वापस की जाएगी नहीं. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, और दिल से कहते रहिए मैं अपने खुद का फेवरेट हूँ, और जियो बिंदास.

मेरा मानना है कि कुछ रातें आवाजों से याद रहती हैं और कुछ एहसासों से नहीं। हे हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज के सफर में। और आज की ये महफिल अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज हमने पहले प्यार की यादों को महसूस किया, कुछ दिल के सवालों को छेड़ा और कुछ ऐसी बातों को जो शायद सिर्फ रात की खामोशी में ही समझी जा सकती है। अगर आज की किसी लाइन ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, या किसी कहानी ने पुरानी याद दिला दी हो, या किसी बात ने दिल को हल्का कर दिया हो, तो समझिए आज की रात खूबसूरत थी। जी, मेरा मकसद जो था वो सक्सेसफुल हुआ, अपने दोस्त के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का। अब वक्त है ख्वाबों को अपनी कहानी लिख देने का और नींद को अपनी जिम्मेदारी निभा देने का। मैं हूं आरजे आकाश, आपसे इजाजत चाहता हूं। फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी जगह और इसी अपनेपन के साथ। जो चला गया ना दोस्त, उसका शुक्रिया। जो पास है उसकी कदर कीजिए, और जो कल आने वाला है उसका इंतजार मुस्कुरा कर कीजिए। चलता हूँ, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और जाता जाता ब्यूटीफुल से ट्रैक लगा के जा रहा हूँ ताकि आपका जो ये आने वाले सफर है, चाहे जिंदगी का हो या गाड़ी का, बहुत बेशुमार खूबसूरत सा रहे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दिल से कहते रहिए जियो बिंदास, गुड नाइट, बाय बाय।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

नजर, खुला चेहरा, हंसते हुए लब, एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का।

Radio Olive, your happiness frequency.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Olive,
1: 106.3 Radio Olive. खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ. इजाजत है.
2: मेरी

इजाजत है। This is the Rishi Rich Beat.